पहला प्रणाम उस देव को जिनके आशीर्वाद से हर सपना साकार होता है। गणपति जी की भक्ति में जो भी कोई खो जाता है उसे जीवन का सच्चा आनंद मिल जाता है।

मेरी मेरी करते जन्म ग्यो सायर सोख पुंज भलेओ। मनुख दा सारा जीवन ए मेरा है ओ मेरा है कहिंदिआं पदार्थां नूं इकट्ठा करन दे विच बीत जांदा है ते ओ असल परमात्मा दी भगती तो वांझा रह जांदा है। अंत समें कुछ वी नाल नहीं जांदा जिस नाल मनुखा जीवन व्यर्थ ही चलिआ जांदा है।

हर मोड़ पर मुकाम नहीं होता, हर मोड़ पर मुकाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता। चिराग की रोशनी से ढूंढा है आपको, चिराग की रोशनी से ढूंढा है आपको, आप जैसा दोस्त मिलना आसान नहीं होता, आप जैसा दोस्त मिलना आसान नहीं होता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और नाल दी नाल न्यूज ऑन एआईआर ऐप वाले दोस्तों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। स्टूडियो घड़ी ते इस वक्त समा 7:04 ते 40 सैकंड हो गए ने। थोड़े सब दा फेवरेट वाला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर लैके थोड़ा दोस्त ललित हाजिर हो चुका है। संडे वाली इस खूबसूरत सजरी सवेर दे विच मेरा और थोड़ा साथ बनिया रहेगा ठीक 10 बजे तक, ठीक 8:30 बजे तक तुसी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच बने रहोगे और 8:30 बजे होणगियां पंजाबी दे विच खबरां और 8:40 ते होएगा बैक टू बैक म्यूजिक वाला प्रोग्राम अड्डी टप्पा और 9 बजे आगाज होएगा सब दे दिलां दी धड़कन दिल अपना पंजाबी दा, जिथे तुसी दिल खोल के दिल दीआं गल्लां कर सकदे हो। सो फिलहाल संडे वाली खूबसूरत वाली जही मॉर्निंग दा आगाज हो चुका है। संडे वाला खूबसूरत दिन, बहुत सारिया खुशियां, बहुत सारे चा, बहुत सारिया उमंगा दे नाल थोड़े वेड़े दे विच एक मिठी जही ठंडी जही हवा दे नाल पहुंच चुका है। और संडे वाली मॉर्निंग दे विच जिहड़ा आ हल्की हल्की बरसात किते किते हो रही है, उस बरसात ने जिहड़ा आ इस मौसम दे विच थोड़ा जिहा राहत दा काम कीता है। सो करांगे होर भी ढेर सारियां गल्लां बातां, नाल दी नाल तुहानू इनफॉर्मेशन भी, तुहाडे एंटरटेनमेंट दा भी ख्याल रखा जाएगा और थोड़ी थोड़ी जानकारी दे विच वाधा भी कीता जाएगा। सो आगाज़ करने अज दी इस खूबसूरत सजरी सवेर दा इस खूबसूरत जे गीत दे नाल और एक गीत सारे ही दोस्तां मित्रां नूं डेडिकेट करन जा रहे हैं, जिन्हां दोस्तां ने अज मिलना है, चिरां बाद मिलना है, या किसी ने किसी नूं मिलन जाना है, या फिर रज के गल्लां बातां करनियां ने अज दे दिन। सो ये गीत इंजॉय करते हैं और मिलते हैं इस खूबसूरत गीत बाद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दीआं गल्लां बातां लैके। Oh!

हो चुका है और इस सजरी सवेर दे विच जड़ा है मौसम भी खुशनुमा बन गया है। सो इस प्यारे जे मौसम का तुसी भी आनंद माण सकते हो। सो उस कादर दी कुदरत दे जड़े नज़ारे ने ओ बहुत ही कमाल दे वेखण योग बन चुके ने, क्योंकि कुदरत जड़ा है अपना रंग जड़ा है ओ जरूर दिखाउंदी है। किते किते गर्मी, किते किते ठंडियां हवावां, कदे कदे बरसात। सो यही है उस कुदरत दे रंग। सो एफ एम रेनबो के रंगों के तुसी आनंद माण रहे हो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर का। तो हुण असी गल करांगे अज का दिन इतिहास के पन्नियां के उपर कि छाप छड के गया और किहड़ियां घटनावां सन जिसने अज के दिन नूं बनाया बेहद खास और इतिहास के पन्नियां के उपर अपनी अमिट छाप छड गईआं वो घटनावां। सो अज ही के दिन 1765 दे विच फिलाडेल्फिया दे विच पहला अमेरिकी कॉलेज जिहड़ा मैडिकल कॉलेज खुलिया सी और 1830 दे विच दुनिया दे विच भाफ इंजन तो चलन वाली पहली नियमित यात्री रेल गड्डी जिहड़ी है अज ही दे दिन 1830 दे विच शुरू की गई सी और 1913 दे विच पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र जिहड़ी है प्रदर्शित हुई सी और अमेरिका दे विच पहली यात्री उड़ान न्यूयॉर्क तो अटलांटिक सिटी दे विच संचालित हुई सी 1919 नूं। और विश्व युद्ध तो बाद जापान ने नवा संविधान 1947 दे विच अज ही दे दिन लागू किया सी और 1961 दे विच कमांडर एलन शेफर्ड अंतरिक्ष विच जाण वाले पहले अमरीकी यात्री बने सन और 1999 दे विच देश दे पहले 50 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का हरियाणा दे विच शुभारंभ होया सी और 1993 दे विच संयुक्त राष्ट्र ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की सी और 1998 दे विच यूरो नू यूरोपीय मुद्रा के रूप दे विच स्वीकार करन दा यूरोपीय नेताओं वल्लों इतिहासिक फैसला लिया गया सी और 2003 दे विच आस्ट्रेलिया दे स्टीव वॉ टेस्ट क्रिकेट दे विच सर्वाधिक रन बनाउण वाले दूजे बल्लेबाज बने सन और अज ही दिन 2004 दे विच वेस्टइंडीज़ ने 6वें एक दिवसीय मैच दे विच इंग्लैंड नूं 4 विकेट दे नाल हराया सी और 2013 दे विच चीन दे विच डायनासोर दा लगभग 16 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिलिया सी और 2016 दे विच 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारां दी घोषणा हुई सी जिहदे विच मनोज कुमार अमिताभ बच्चन ते कंगना रनौत नूं सन्मानित कीता गया सी और इस तों इलावा अज वर्ल्ड लाफ्टर डे सैलीब्रेट कीता जा रहा है। ते हुण गल करदे हां अज ही दे दिन इतिहास दे पन्नियां दे उपर ओह घटनावां जिन्हां ने इतिहास नूं बदल के रख दित्ता। सो अज ही दे दिन बहुत सारे जिहड़े ने ओह प्रसिद्ध विद्वानां दा जन्म होया जिन्हां विचों इटली दे विख्यात राजनेता इतिहासकार निकोलो मैकावली दा फ्लोरेंस दे विच जिहड़ा 1469 दे विच जन्म होया। भारतीय राष्ट्रवादी राजनीतिक कूटनीतिज्ञ और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन का जन्म 1896 दे विच अज ही दे दिन होया। सो गणित दी दुनिया दे विच सम्मान हासिल करन वाले फील्ड्स मैडल पाउण वाली पहली महिला गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी का जन्म 1977 दे विच अज ही दे दिन होया और अज ही दे दिन भारत के तीजे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन 1969 दे विच होया। भारतीय अभिनेत्री नरगिस दत्त का निधन 1981 दे विच अज ही दे दिन होया और भारतीय सेना के कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा का निधन अज ही दे दिन 2005 दे विच होया। सो यह सन वह घटनावां जिन्हां ने इतिहास के पन्नियां दे उपर अपनी अमिट छाप छटी और अज दे दिन नूं अमर कर दिता। सो इस तरह दीआं गल्लां बातां प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच तुहाडे नाल सांझियां करदा रहांगा। फिलहाल वेला हो गया एक छोटे जे

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: gare gare
1: yes gare padaje
0: gare gare
1: yes sura badala
0: gare gare
1: ye amaka patta
0: gare gare
1: yes sura kidara ji yes sur yes inna aaya hai do yes
2: एक चतुर नार अम छोड़ गए जे एक चतुर नार अम पकड़ कर रखेगा जे
0: मैं

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़, FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़ वाले दोस्तों नूं एक बारी फिर तों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं क्या जी हुण जरा अपने रेडियो सेट की आवाज़ थोड़ी जी चक दिओ क्योंकि जनाब पैन लगा है रोड़ा रप्पा और प्रोग्राम शुरू होण जा रहा है अड्डी टप्पा। बैक टू बैक पंजाबी गीतों का आनंद तुसी माणोगे। 102.7 FM रेनबो, 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और नाल दी नाल न्यूज़ ऑन AIR ऐप ते। और ठीक 9 बजे आगाज़ होएगा थोड़े मेरे सब दे फेवरेट वाले प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दा, जिथे तुसी दिल खोल के दिल दीयां गल्लां कर सकदे हो, चंगा लिखते हो, चंगा गाते हो या फिर किसी का लिखा गीत कविता नज़म शायरी पोएट्री थानू बेहद पसंद है, थोड़े दिल दे बेहद करीब है, तुसी उस दियां कुछ कु लाइन साढ़े नाल सांझियां कर सकते हो। फिलहाल अज असी सैलीब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे और हसाउण वाला कोई चुटकुला है थोड़े कोल या कोई हासे वाली गलबात है, कोई अजिही गल जिन्हों अज भी याद करके थोड़े बोलों पर हासा आ जाता है तो उस हासे नूं तुसी साढ़े नाल सांझा कर सकते हो। थोड़े उस हासे विचों असी भी हसांगे और साढ़े बाकी दोस्त भी जरूर हसणगे। सो 9855 10 10 27 ठीक 9 बजे प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी। सो फिलहाल बैक टू बैक पंजाबी गीतों का आनंद माणदे हां ते सुणदे हां पहला गीत। Coming like Mr. Kipling.

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: वाजा बेबी
2: इधर दे दे तो मैं कर दी मर जाऊंगा। आया तो
1: तेरा तो परे हो के ना चिगुड़िए, तेरा भी ढोर ढोर ना मार चिगुड़िए, ढोरा ढोरा होली होली ना चिगु।
2: आगे थोड़े तक कॉपर मुझे मारे है कर तो
1: मैं ओ लोग यार मैं मेरा मैं डीजे आला भाई कितने लोना डीजे मिनी जगह पे दिखाई कितने लोना डीजे
2: सीधी तरह नहीं बोल सकता तो पोसिया मरी जाना की करना है
1: डीजे नू लगोना जेड़ा नचदा नी बंदा उनू भर के नचोना मैं लोना ते लोना मैं इत्थे ही डीजे लोना मैं इत्थे ही लोना मैं
2: अरे पापे ते सवारा लगना इत्थे भेजिया किन्ने तेनू इत्थे
1: ਥੋਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰੋਣਾ ਅੱਜ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣਾ ਨਾਲੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਡੀਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋੜਾਂ ਮੈਂ ਡੀਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋੜਾਂ ਮੈਂ
3: जी दोस्तों तुसी भी दस सकते हो भी थानू ए डायलॉग्स किना दे लगे ने और केड़ी फिल्म दे विचो ए डायलॉग लए गए ने तुसी भी अपने जिहड़े जवाब साडे नाल सांझा कर सकते हो और दस सकते हो। नाल दी नाल मैं एक बुझारत भी पुछी सी थोड़े कोलों भी साल मगरों गड्डी आई कोई चढ़ गया कोई रह गया।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीला मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का फॉलो अप प्रोग्राम है, मन की बात का विस्तार है। प्रधानमंत्री जी जिन विषयों का उल्लेख मन की बात में करते हैं, उन विषयों के विशेषज्ञों को हम आमंत्रित करते हैं अपने कार्य

0: कार्यक्रम में और उस विषय के बारे में अपना ज्ञानवर्धन करते हैं उनकी बातों से। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में उल्लेख किया है सेंसस का, जनगणना का, और हमें प्रेरित किया है कि हम इस विषय के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपनी ओर से पूर्ण सहयोग भी दें। तो इस बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। स्टूडियो में हमारे अतिथि हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं। मैं स्वागत कर रही हूँ सबसे पहले श्री अजय गर्ग जी का। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और मैं स्वागत कर रही हूँ डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा का। आप DD हैं, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस। जितेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
0: तो आइए साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें प्रधानमंत्री जी ने जनगणना का उल्लेख किया है।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष ID मिलती है। यह ID आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही ID दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। आपकी दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहती है, यह गोपनीय रखी जाती है। डिजिटल सुरक्षा के साथ इसे सुरक्षित किया जाता है। आइए हम सब मिलकर इस प्रक्रिया में भाग लें, जनगणना 2027 को सफल बनाएं।
0: तो सुना आपने किन शब्दों में प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रेरित किया है कि इस विषय के बारे में हम जानें और अपनी ओर से पूर्ण सहयोग करें। तो अब मैं बहुत सारे सवाल लेकर, अपने सभी श्रोताओं के मन में जो सवाल है वो लेकर, अपने साथियों के सवाल लेकर यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ और हमारे जो दोनों विशेषज्ञ हैं आज हम इनसे जानेंगे इनके उत्तर। तो मैं शुरुआत करती हूँ अजय जी से। अजय गर्ग जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम कहते हैं जनगणना, तो आखिर इसकी जरूरत क्यों है देश को?
1: हमारी जो नीतियाँ बननी हैं
0: जी,
1: तो हमारे पास पूरा लेखा जोखा होना चाहिए कि हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में, शहरों में, गांवों में कितने लोग रह रहे हैं, उनका वर्गीकरण क्या है, कितने हमारे यहाँ पर महिलाएं हैं, कितनी पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, उम्र के हिसाब से किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तभी आप उसके हिसाब से स्वास्थ्य की, समाज कल्याण की और विभिन्न योजनाओं को आप एक मूर्त रूप दे सकते हैं
0: जी।
1: आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जनगणना भारत में सबसे पहले 1871 में हुई
0: जी,
1: लेकिन वो एक साथ नहीं हुई थी, मतलब हर प्रांत में अलग अलग समय पे हुई थी। उसे नॉन सिंक्रोनस बोलते हैं। 1881 में पहली बार जनगणना सिंक्रोनस हुई, सभी एक साथ हुई।

0: उसके बाद ये हर 10 साल में एक जनगणना होती रही।
1: जी
0: जनगणना ही हमारी सभी नीतियों का डेटा प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर जैसे परिसीमन हुआ,
1: जी
0: हमारी जो विधानसभा की सीट्स हैं, लोकसभा की सीटें हैं, उन सब के जनगणना में क्या सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा सिर्फ हम जनगणना में सिर्फ लोगों की संख्या की गिनती नहीं कर रहे हैं कि कितने मेल हैं, कितने हमारे वुमेन हैं, कितने बच्चे हैं। उसके साथ साथ हम जो हैबिटेशन है,
1: जी
0: जैसे जहाँ पे लोग रहते हैं, उसकी भी हम डिटेल इकट्ठी करते हैं कि दीवारें कैसी हैं, छत कैसी बनी हुई है, किस तरीके का ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, और पानी की सुविधा किस तरीके की है। 30 तरीके की हम एट्रीब्यूट्स इकट्ठी करते हैं
1: जी
0: जिसमें लोग रह रहे हैं। और इसके बाद जिसे हम पॉपुलेशन इन्यूमरेशन कहते हैं, जिसमें लोगों की हम संख्या की गणना कर रहे हैं, उसमें लोगों की जो हर व्यक्ति की करीब 25 से 30 हम डिटेल इकट्ठी करते हैं कि कितना पढ़ा हुआ है, किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट में है वो, उसका जो व्यवसाय का जगह है कितना दूर है उससे, कितना उसे चलना पड़ता है,
1: जी
0: कौन से धर्म का है वो, इस बार हम जाति का भी उनसे डिटेल लेंगे,
1: जी
0: तो इस तरीके से कौन सी भाषा बोलता है वो, तो हमारे पास बहुत रिच डेटाबेस है जिसके आधार पे हम लोग, तो ये मोटा मोटा सा जनगणना का।
1: जी मेरा इससे जुड़ा हुआ ही एक सवाल था। अक्सर लोगों के मन में ये बात आती है कि जब जनगणना की बात है तो सिर्फ ये जान लेना काफी होना चाहिए कि इस घर में 5 व्यक्ति हैं और इस घर में 7 व्यक्ति हैं, यानी हम एक नंबर हैं और कुल संख्या आपको पता चल गई। इतने विस्तार में क्यों जानना है कि हम क्या काम करते हैं, हम कैसे घर में रह रहे हैं? लेकिन अभी आपकी बातों से ही ये जवाब मिला कि आगे जो नीतियां बनेंगी, जिस तरह के बेनिफिट्स दिए जाने हैं लोगों को, उनके लिए भी ये डेटा जो है काम आएगा बाद में।
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल
1: तो एक सवाल मैं जितेंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगी।
0: जी।
1: जनगणना होनी है ये सबको पता है, लोग तो तैयार भी हैं, इस बारे में बात भी हो रही है, लेकिन उससे पहले पूरा विभाग जो है, पूरा मंत्रालय जो है, वो किस तरह की तैयारियों में लगा है? आजकल काम का कितना दबाव है वो बताएं।
0: देखिए, काम का दबाव तो बहुत है अभी।
1: जी
0: जब आप मंत्रालय का जो तैयारी के बारे में जैसे पूछ रहे हैं, ये लगभग अभी 1 साल पहले ही ये शुरू हो गई थी।
1: जी
0: और ये जनगणना जो होती है, ये एक सेंसस एक्ट के तहत होती है, ये 1948। तो पहले हमारे जो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो पहले अपना इंटेंशन पहले वो दर्ज करते हैं गेजेट में। तो ये आई थी आपके जून महीने में आई थी, 2025 जून महीने में आई थी।
1: जी
0: उसके बाद हर राज्य और केंद्र शासित जो अंचल है वो भी अपने मतलब गेजेट में उसको फिर से रीनोटिफाई करते हैं कि हमारे भी स्टेट में, यूनियन टेरिटोरी में भी सेंसस करानी है।
1: जी
0: तो इस तरीके का एनसीटी और दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इसको रीनोटिफाई किया था जुलाई में, जुलाई 2025 साल में। तो 2025 जुलाई महीने से लेकर आज तक हर दिन हम तैयारी में जुड़े हैं, और अभी
1: जी
0: सेंसस भी ऐसे स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसा कोई काम नहीं है कि मतलब बिना प्री प्लान करते हुए ये होती है
1: जी
0: सेंसस जैसे काम में, कि ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। और लगभग लगभग इसमें, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो 50-55 हज़ार से भी ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हैं अभी काम में।
1: जी
0: जी
1: तो अजय जी, अगले सवाल से पहले मैं आपकी पसंद का कोई गाना यहाँ पर पूछना चाहूंगी, और उसके बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे पास है।
0: जी जी जी तो मुसाफिर हूँ यारों।
1: जी
0: हाँ
1: ये गाना पसंद है आपको?
0: हाँ
1: ठीक है, तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को।

0: बहुत ही प्यारा सा गाना। गाने में तो भले ही जो कलाकार है और जो हमारे सिंगर है उन्होंने कह दिया ना घर है ना ठिकाना, लेकिन हमें अपने घर ठिकाने का पूरा पूरा और सही सही पता जरूर बताना है सेंसेस के लिए। तो अब मैं अजय जी ये आपसे जानना चाहूंगी कि जब हम बात करते हैं जनगणना की, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे डिटेल इस समय हम जो हैं वो ले रहे हैं, लोगों के डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ऐसे में, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अपनी ओर से भी जो जनता है वो उसमें सहयोग करेगी, शुरुआत करेगी, तो संख्या बल जो है दुनिया में वो हमारी एक ताकत है, लेकिन जब जनगणना की बात आती है तो यही काम बहुत बड़ी चुनौती भी बन जाता है। तो ऐसे में ये बताएं कि आपने किस तरह का जो पूरा एक तंत्र है वो खड़ा किया है, किन लोगों को शामिल किया है इसमें, और वो कितने रिलायबल हैं, हम कितना भरोसा करते हैं उन लोगों पर जो घरों में आएंगे और हमारा डेटा इकट्ठा करेंगे।
1: जी, इसमें क्या होता है कि जो घर में जाते हैं, हर घर में विजिट करते हैं, उनको हम इनोमिनेटर कहते हैं
0: जी।
1: उसमें हमने क्या किया है कि दिल्ली को करीब हमने 46,000 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है और हर ब्लॉक में करीब 200 के आसपास घर हैं
0: जी।
1: तो एक ब्लॉक को एक इनोमिनेटर का काम दे दिया जाता है और इस तरीके से 6 इनोमिनेटर के ऊपर एक सुपरवाइजर होता है। तो करीब हम लोगों ने 46,000 इनोमिनेटर लगाए हैं, तो करीब 8-9 हजार सुपरवाइजर लगाए हैं
0: जी।
1: फिर उनके ऊपर होते हैं चार्ज ऑफिसर और चार्ज ऑफिसर के ऊपर होते हैं डीएम, डीएम, एडीएम और एसडीएम अपने अपने एरिया के हिसाब से। तो जो मेन डिस्ट्रिक्ट का जो है इंचार्ज सेंसस का वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो इनोमिनेटर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और बाकी के दूसरे डिपार्टमेंट्स के जहां पर हैं। सिमिलरली जो सुपरवाइजर हैं वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर लोग हैं। हर इनोमिनेटर के पास एक अपना आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, एक उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा, तो आप देख सकते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं, और जिस डिपार्टमेंट का होगा उस डिपार्टमेंट का भी उसके पास कार्ड होगा। कोई आपको परेशानी है तो आप अपने एरिया के जो एसडीएम हैं या डीएम हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो हम लोगों ने एक एलोबोरेट वो कार्यक्रम चलाया है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी आरडब्ल्यूएच के साथ मीटिंग कर रहे हैं और पब्लिसिटी भी हमारी हो रही है, तो ऐसी परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप अपना संतुष्टि कर लें, कोई आता है आपको विजिट करने आता है तो उसका आई कार्ड देखें, वो देखें। और दूसरी बात ये कि जो हमारी एमसीडी एरिया में जनगणना है पहले फेज की, वो हमारी 16 मई से शुरू हो रही है
0: जी,
1: 16 मई से लेके 14 जून तक, तो उस समय लोग आएंगे वहाँ पर
0: जी, जी। यानी एक स्पेसिफिक टाइम है और जो लोग आएंगे उनके पास अपना
1: आई कार्ड
0: ही होगा और उस तरह के दस्तावेज होंगे कि उनसे हम पूछ सकते हैं। और ये ज्यादातर उस तरह के लोग हैं जो पहले ही सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं,
1: सरकारी कर्मचारी हैं
0: तो उन पर भरोसा आसानी से किया जा सकता है। आम लोग जो डेटा देंगे वो पूरी तरह सुरक्षित भी रहेगा,
1: वो पूरी तरीके से गोपनीय रहेगा
0: जी।
1: वो जो आपने डेटा दिया है वो इनोमिनेटर अगर उसको किसी को वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है
0: जी। तो जितेंद्र जी मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे जो डेटा दिया गया क्या उसके सत्यापन के लिए भी कुछ और हमें कागजात देने होंगे? अगर एक व्यक्ति दो घरों में रह रहा है, वो अलग अलग जोन में वो घर पड़ते हैं, तो क्या सत्यापन के लिए भी कुछ देना होगा? और जैसे छात्र हैं किराए पर रह रहे हैं तो उनका परिवार कहीं और है, वो कहीं और है, ऐसी परिस्थितियों में क्या करना होगा?
2: देखिए, हमारे जनगणना में हम एक चीज को हम फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं डिफेक्टो मेथड, मतलब जो जहाँ पे है नॉर्मली जो जहाँ पे रह रहे हैं हम वहाँ पे उनको गिनेंगे
0: जी।
2: तो जैसे आप अभी

0: दो ग्रुप ऑफ पीपल का नाम लिए, एक
1: जी
0: तो जो रेंट में रहने वाले लोग और
1: जी
0: जो एक स्टूडेंट्स, और जिसका नंबर शायद बहुत ही ज़्यादा है दिल्ली जैसे जगह में। अगर वो लोग नॉर्मली यहाँ पे रहते हैं
1: जी
0: और सेंसस के दौरान अगर उनको यहीं पे अगर पाया जाता है, जो भी एनिमल उनके घर में जाएंगे, तो उनकी गिनती यहीं होनी चाहिए।
1: जी
0: और इसमें आपने और जो दूसरे जो सवाल पूछे कि सत्यापन कैसे किया जाएगा, तो सेंसस में हम कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछते हैं,
1: जी
0: कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। रेस्पोंडेंट जैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे, हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, और ये टोटली ये रेस्पोंडेंट बेस्ड आंसर्स होती है ये, तो इसमें उसको वेरिफिकेशन करने की कोई स्कोप नहीं है।
1: जी
0: तो जो भी एनुमरेटर जाएंगे वो केवल हमारे जो शेड्यूल में जो दिया हुआ क्वेश्चन को वो पूछेंगे, और रेस्पोंडेंट जो आंसर देगा उसको वो रिकॉर्ड करेंगे।
1: जी
0: और ज़्यादातर ये हमारे दिल्ली जैसे जगह पे कि हम लोग देखे हैं पिछले सेंसस में भी, कि जो रेंट में रहते हैं या तो जो स्टूडेंट्स जो बाहर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनका यहाँ पे गिनती सही नंबर पे होती नहीं है।
1: जी
0: और इस बार हम काफ़ी इस चीज़ के ऊपर जोर भी दे रहे हैं, जो पब्लिसिटी हमारे जो होती है उसमें भी हम बार बार सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बताते हैं कि अपने लोकल लेवल पे भी ये जागरूक लाए कि जो रेंट में रहने वाले लोगों को भी यहाँ पे गिना जाए।
1: जी
0: और इसके पीछे का खास एक मकसद भी है, अगर उनके नंबर हम दिल्ली में अगर नहीं गिनेंगे तो बहुत बड़ी एक प्रोपोर्शन लोगों को हम छोड़ देंगे।
1: जी
0: और आप अगर देखेंगे तो दिल्ली के जो भी रिसोर्स है, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो आपके बेसिक अमेनिटीज जिसमें ड्रिंकिंग वाटर हो, तो ये तो दिल्ली के ही यूज़ कर रहे हैं। तो
1: जी
0: अनलेस अनटिल उनका नंबर हमें पता चले, बेटर प्लानिंग भी नहीं बना सकते हम दिल्ली के लिए।
1: जी
0: तो ये इससे आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये जनरल पब्लिक को ये कहना चाहेंगे कि अगर उनके घरों में कोई पीजी में रह रहा हो या तो कोई रेंट में रह रहा हो, तो उनको भी जरूर गिनती कराए
1: जी
0: जनगणना में।
1: और दिल्ली हम सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, भारतवर्ष में ही यानी हर स्थान पर यही
0: जी
1: प्रक्रिया
0: जी
1: है।
0: जी ये दिल्ली का मैं इसलिए कह रहा हूँ
1: जी
0: क्योंकि हम लोग दिल्ली को देखते हैं, बट ये जो मैंने जो बताया अभी, ये पूरे भारत के लिए लागू है।
1: जी अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि बाद में नीतियां भी बनाई जाएंगी, उनका लाभ मिलेगा आम लोगों को, लेकिन कई लोगों के मन में ऐसा भी भाव होगा कि अगर हम ना बताना चाहें अपने बारे में, हम जनगणना में भाग ना लेना चाहें, तो क्या हम पर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या ये जरूरी है भाग लेना?
2: हाँ, जरूरी है।
1: जी
2: सेंसस जो कानून है 1948 का, वो हर नागरिक के ऊपर एक जिम्मेवारी देता है कि
1: जी
2: वो सही जानकारी दे
1: जी
2: जो उनसे मांगी जाएगी, जो पूछी जाए।
1: जी और ऐसे में क्या डबल काउंटिंग भी हो जाती है, जैसा कि अभी बात की जितेंद्र जी ने, कि कोई किसी का परिवार मान लिया उत्तर प्रदेश में कहीं रह रहा है छोटे से गांव में, और उनका बच्चा दिल्ली में आकर पढ़ रहा है या मुंबई में है, तो मुंबई में वो रेंट पर रहता है, वहां उसकी गिनती हो गई है, ऐसे में परिवार में जो माता पिता हैं वो भी अगर उसके बारे में बताएं, तो क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें पता चल पाए कि दो जगह एक ही व्यक्ति का नाम गिना जा चुका है?
2: उसको हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि 100%, लेकिन जो नियम ये है कि जो जहाँ पर नॉर्मली रहता है वहीं पे काउंट होगा।
1: जी
2: अगर कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है तो वो यहीं पे काउंट होगा,
1: जी जो जहां रह रहा है उसकी
2: नॉर्मली
1: गिनती
2: जहाँ
1: वहीं
2: पे
1: पर
2: रह
1: होनी
2: रहा है,
1: चाहिए।
2: या
1: जी
2: सामान्यता जहाँ पे रह रहा है वहीं पे काउंट होगा, वो वहीं पे उसे अपने आप को काउंट कराना चाहिए।
1: जी जो मकान मालिक होते हैं उनके मन में अपनी संपत्ति को लेकर अक्सर एक डर रहता है, इसीलिए जो रेंट एग्रीमेंट भी होते हैं कई बार वो बहुत डर के साथ बनाते हैं या कुछ क्लॉज उसमें रखते हैं, ऐसे में अगर जनगणना में किराएदारों को उसी संपत्ति पर गिना जाएगा, उनका एड्रेस वही जनगणना में शामिल होगा, तो क्या आगे चलकर मकान मालिक को इससे कोई खतरा हो सकता है?
2: नहीं
1: उन्हें डरना चाहिए क्या इस
2: नहीं
1: बात से?
2: नहीं जो आपने जनगणना में इंफॉर्मेशन दी है
1: जी
2: वो ना तो कोर्ट उसको मंगाती है ना आरटीआई में वो प्रोवाइड की जाती है।
1: जी यानी जो कहा जा रहा है कि अगर आपके यहाँ कोई किराएदार है, अगर आपके यहाँ कोई स्टूडेंट रह रहा है
2: हाँ
1: और पीजी के रूप में रह रहा है, तो उनकी भी सही जानकारी देनी चाहिए, और आगे चलकर वो आपकी
2: हाँ
1: संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर
2: आपकी, हाँ
1: सकते,
2: उसके आधार पे नहीं कर
1: उसके
2: सकता है,
1: आधार पर नहीं
2: उसके
1: कर
2: आधार।
1: सकते हैं। जी मैं अब जितेंद्र जी आपकी पसंद का कोई गाना यहाँ पर सुनवाना चाहती हूँ अपने श्रोताओं को।
0: मेरे पसंद का एक गाना आप चला सकते हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।
1: जी तो आपकी पसंद का गाना सुनवा
0: जी
1: रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जनगणना की, और हमारे साथ स्टूडियो में इस समय हैं श्री अजय गर्ग। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं, और साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस में, और हमारे दोनों ही जो विशेषज्ञ हैं हमारे जानकारी बढ़ा रहे हैं जनगणना की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो अजय जी, आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जनगणना का प्रोसेस है आपने बताया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो हमने सुना उसमें भी उन्होंने कहा कि शुरुआत जो है वो जनता को अपनी ओर से करनी है, दो चरण इसके आमतौर पर होंगे। तो वो पहला चरण क्या है, हम किस तरह से ऑनलाइन कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे अपनी जानकारी देंगे?
1: हाँ, इस बार जैसे सेल्फ इनुमरेशन कहते हैं, स्वगणना उसको रखा गया है। तो इसमें जैसे हम MCD एरिया का ले लें, तो MCD एरिया में 1 मई से लेके 15 मई तक आप स्वगणना कर सकते हैं। स्वगणना मतलब सेल्फ इनुमरेशन का मतलब ये है कि आप उस पोर्टल पे चले जाएं
0: जी,
1: और बहुत आसान है, अपनी डिटेल खुद भर दें उसमें, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं भरने में
0: जी।
1: और जैसे ही आपने भर के उसको आपने सबमिट किया पोर्टल पे, तो आपका एक नंबर जनरेट हो जाता है
0: जी,
1: जिसे सेल्फ इनुमरेशन ID बोलते हैं। तो इनुमरेटर जब आपके यहाँ पे आएगा तो आप उसे अपनी ऐसी ID दे देंगे, तो फिर वो नहीं भरेगा डिटेल, जो आपकी डिटेल है उसके पास आ जाएगी
0: जी,
1: और वो उसके हिसाब से आगे। तो इससे काम काफी त्वरित हो जाएगा। बाहर के कई पाश्चात्य देशों में स्वगणना का है, तो हमारे यहाँ पर ये पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, डिजिटल सेंसस का एक एक कंपोनेंट है
0: जी।
1: और दूसरा पक्ष क्या होता है, जब हमारा 1 से 15 तक स्वगणना है, सेल्फ इनुमरेशन है, फिर 16 मई से लेकर 14 जून तक MCD वाले एरिया में
0: जी,
1: हमारा फील्ड ऑपरेशन मतलब इनुमरेटर घर घर जाएंगे, और जिन्होंने स्वगणना नहीं कर पाते हैं तो वो उनका डिटेल इकट्ठी करेंगे, और स्वगणना वालों की, सेल्फ इनुमरेशन वालों की सिर्फ SC ID ले लेंगे, नंबर ले लेंगे और
0: जी,
1: इस तरीके।
0: तो प्रक्रिया जल्दी भी हो जाएगी, समय
1: जल्दी
0: कम लगेगा,
1: बहुत जल्दी हो जाएगी
0: जी। हाँ। ऐसे में मुझे ये जानना है कि जब जनगणना हो रही है और घर पर

0: अधिकारी आए हैं, उन्हें डिटेल देनी है। ऐसे में अगर कुछ समय के लिए कोई विदेशी नागरिक किसी परिवार में रुके हुए हैं या कोई ट्रैवलर हैं वो रुके हैं किसी वजह से, आजकल BNB सिस्टम भी है तो घरों में पेइंग गेस्ट के रूप में कुछ समय के लिए रुकते हैं, क्या उनकी डिटेल भी देनी जरूरी है?
1: देखिए, व्यक्ति की जो डिटेल है वो तो हमारा जो नेक्स्ट फेज होगा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन वाला, उसमें ली जाती है। अभी तो बेसिकली घरों का सूचीकरण हो रहा है
0: जी,
1: एक तरीके से हम जो हाउसेज हैं उनकी डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं, बस ये जरूर पता कर रहे हैं कि भाई कितने वो, मतलब एक ही आदमी बताते हैं जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है
0: जी,
1: कि भाई हमारे इसमें 4 लोग हैं या 5 लोग हैं
0: जी। ऐसे में जिस व्यक्ति के नाम वो मकान है, अगर उनका देहांत हो चुका है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो किसका नाम वहाँ लिखवाया जाएगा मुखिया के तौर पर, परिवार के मुखिया के तौर पर?
1: हेड ऑफ द हाउस होल्ड तो कोई जरूरी नहीं है कि वो घर का मालिक ही हो, जो भी वहाँ पर बेसिकली वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनकी जानकारी दे रहा है घर के बारे में, जिसको घर के बारे में मालूम हो।
0: तो उस एड्रेस पर एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को और वो परिवार की
1: जानकारी दे रहा है
0: जी। तो इस तरह के कंफ्यूजन नहीं रखने हैं कि किसके नाम मकान है,
1: वो नहीं जी। बात यह है कि कोई परिवार रह रहा है ये घर में, इस मान लीजिए इधर कोई रह रहा है
0: जी,
1: तो इसको इस घर में कितने लोग रह रहे हैं, इसकी क्या स्ट्रक्चर्स की एट्रीब्यूट्स हैं वो
0: जी वो बताने हैं। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी सर ने बताया कि एक घर का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो रहा है, तो जो कच्ची कॉलोनियां होती हैं, झुग्गी बस्ती जो है, जैसे एक परिवार वहां रह रहा है, वो एड्रेस कहीं कागजों पर पक्का नहीं है, तो ऐसे में वो क्या करें?
2: जी देखिए, जनगणना में हम कभी ये नहीं देखने के लिए कोशिश करते हैं कि ये घर ऑथोराइज कॉलोनी में है कि अनऑथोराइज कॉलोनी में है, रहने वाले आदमी के नाम पे ये कागजात बनाया कि नहीं बनाया, ये हमें नहीं देखना है
0: जी।
2: हमारा जो मकसद है कि पूरे अगर कोई एरिया, जैसे आप, मैं दिल्ली का ही फिर से एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, तो जैसे दिल्ली में जैसे सर बता रहे थे कि 46,000 के आसपास हम लोगों ने ब्लॉक्स बनाए हैं, तो इन ब्लॉक्स में जितने भी स्ट्रक्चर्स है, कहने का मतलब है जितने भी स्ट्रक्चर मकान तो ये भी होंगे, उनको हम पहले फर्स्ट फेज में उसका हम कवर करेंगे
0: जी,
2: जिसको हम कहते हैं मकान सूचीकरण और हाउसिंग सेंसस, उसमें जाके पूरी डिटेल लिया जाएगा। तो इसमें कहीं पर भी हम ये नहीं पूछ रहे हैं जो स्ट्रक्चर में जो रहने वाले पर्सन जो है एक्चुअल उसका वो ओनर है कि नहीं है
0: जी,
2: ये हम कभी नहीं पूछते हैं। और हम सेंसस में हम सभी जगह, चाहे वो ऑथोराइज हो, चाहे वो स्लम हो, चाहे वो झुग्गी जो आप बता रहे थे, हम सभी जगह हम उसको जाके सेंसस कराएंगे
0: जी।
2: हाँ, और इसमें कोई लीगलिटी देखने का कहीं पर भी स्कोप नहीं है। अगर हमारे जो शेड्यूल भी अगर आप देखेंगे, जिसमें हम 33 क्वेश्चन पूछने वाले हैं अभी
0: जी,
2: पहला चरण में, तो यहाँ पे कहीं पे लीगल डॉक्यूमेंट्स का पूछने का कहीं पर भी प्रावधान ही नहीं है
0: जी। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर किसी वजह से गलत सूचना दे दी गई है परिवार के किसी सदस्य के द्वारा और वो बाद में सही करवानी है, तो क्या ये संभव है, इसका क्या प्रोसेस होगा?
1: क्योंकि इस बार डिजिटल है, ऐप के थ्रू डिटेल इकट्ठी की जाती है
0: जी,
1: तो अगर ऐप में मतलब जो एनुमरेटर है उसने सबमिट कर दिया तो फिर चेंज नहीं होगी वो,
0: फिर उसमें सुधार नहीं हो सकता,
1: उसमें सुधार नहीं होगा
0: जी। जैसे गांव देहात में होता है कि माता पिता अकेले रह रहे हैं, वृद्ध हैं, उन्हें पता नहीं है कि बच्चों ने जहां रह रहे हैं वहां अपनी जानकारी दे दी है, और वो भी बता देते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो परिवार का सदस्य तो है ही, तो वो डबल एक तरह से हो गया प्रोसेस, तो उसमें क्या किया जा सकता
1: है? देखिए, डुप्लीकेशन हो सकता है, जो यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि इस फेज में हम जो कर रहे हैं वो हाउसिंग सेंसस कर रहे हैं
0: जी,
1: तो उसमें हम मोटा मोटी यही मांग रहे हैं कि जो आदमी उस घर में नॉर्मली रहता है, तो हो सकता है कि लोग, कुछ लोग इस तरीके का
0: जी। और
1: वैसे तो इनोमरेटर उनको जाके समझाता है, भाई इनोमरेटर जाके समझाता है कि भाई जो बाहर रह रहे हैं वो मतलब उस तरीके से उनको जानकारी देता
0: जी,
1: है
0: उस समय भी उनको पहले समझाया जाएगा, तब उनसे डिटेल ली जाएगी जी। और जो घर लंबे समय तक बंद मिले उनके बिहाफ पर कौन जानकारी देगा?
1: नहीं, वो तो लॉक्ड लिख के हम आगे बढ़ जाते हैं
0: जी। ठीक है, तो जितेंद्र जी, अब
2: इसमें मैं थोड़ा सा सर ने तो बता दिए, बट जो हमारे जो एन्यूमरेटर या तो उनके ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं उनका बहुत ही एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग होती है
0: जी,
2: 3 दिन की, और इस ट्रेनिंग के दौरान हम उनको अच्छे से समझाते हैं कि हमारे सेंसस के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे नॉर्मली रिसाइडिंग कौन हो सकते हैं, जैसे आपका जो सवाल था
0: जी,
2: कि अगर एक स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स उसके होम स्टेट में है, तो वो एन्यूमरेटर जब उनके घर विजिट करेंगे तो वो जनरली कुछ प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछेंगे
0: जी।
2: जैसे सपोज ओल्ड पेरेंट्स है तो उनको ये पूछेंगे कि आपके बच्चे क्या आपके साथ रह रहे हैं कि वो बाहर रह रहे हैं, तो इस तरीके एकदम से जाके ये सवाल नहीं करेंगे कि आपके इस घर में कितने लोग रहते हैं, थोड़ी सी प्रोबिंग टेक्निक्स को यूज करके वो अपने क्वेश्चन करेंगे
0: जी,
2: ताकि हमारा जो सही जो सवाल है उनसे हम निकाल सकते हैं या तो पूछ सकते हैं।

0: ले सकते हैं उनसे।
1: जी।
0: और लॉक्ड वाला सर ने बता दिए, बट हमारे जो पहला चरण का जो समय सीमा जो है वो 30 दिन की होती है। तो ये 30 दिन के अंदर अगर एनुमरेटर फर्स्ट या सेकेंड डे में जाके देखा कि घर लॉक्ड है, तो उसका कोशिश ये होनी चाहिए कि वो सेकेंड या थर्ड टाइम भी जाके उसको चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले। कई बार जैसे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो निकल जाते हैं अपने काम में, तो मैं भी अगले दिन वो शाम को जाएँ।
1: जी।
0: और जैसे ऐसे भी परिवार है जो मंडे से लेके फ्राइडे तक वो बहुत बिजी होते हैं, तो उनको रिविजिट करने के लिए वो एक बार सैटरडे या तो संडे को चले जाए, तो
1: जी
0: एक बार रिकन्फर्म करके उसको लॉक या तो वैकेंट लिखे,
1: जी
0: ताकि हमारे यहाँ पे जो लोग जो रहने वाले एक्चुअल जो वो ना छूटे।
1: जी
0: मेन पर्पज हमारा वो है, इसीलिए 30 दिन का वो दिया गया है विंडो पीरियड। और ये 30 डेज के बाद भी अगर उनको रिकन्फर्मेशन के बाद भी पता चलती है कि घर वैकेंट है, लॉक्ड है, तो उनको वही मार्क करनी है, लॉक्ड या वैकेंट।
1: जी,
0: जी
1: यानी पूरा प्रयास किया जाएगा कि
0: जी
1: सही जानकारी दर्ज हो
0: जी
1: और सही समय पर भी हो, जो सुविधाजनक
0: जी
1: समय
0: हाँ
1: है।
0: जी
2: उसमें बेसिकली जो जितेंद्र ने बोला कि जो लॉक्ड हाउस है उसको एक दो बार,
1: जी, प्रयास किया जाएगा।
2: एक दो बार फिर से विजिट किया जाता है।
1: जी, यहाँ अजय जी आपसे ही जानना चाहूंगी, जैसा अभी बताया जितेंद्र जी ने कि प्रशिक्षण दिया गया है और बहुत सारी बातें उसमें बताई गई हैं, तो आपने भी बातचीत के माध्यम से बताया कि कई चीजें नई हैं, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो पहले जनगणना हुई है भारत में और जो इस बार हो रही है, तकनीकी तौर पर, व्यावहारिक तौर पर क्या अंतर है प्रक्रिया में?
2: तकनीकी तौर पर यह है कि ये इसमें हम डिजिटल टूल्स का
1: जी।
2: इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके 4 डिजिटल टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला तो है जिसे हम कहते हैं कि CMMS पोर्टल,
1: जी
2: जहाँ पर पूरा सेंसस का जो मैनेजमेंट है, तो उसको हम इसके थ्रू, इसमें जितने भी, जैसे पूरी कंट्री में करीब 34 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनको इंगेज किया जा रहा है सेंसस प्रोसेस के लिए। तो उन सबका रजिस्ट्रेशन हो गया,
1: जी
2: फिर उनको अलॉटमेंट है कहाँ पे ड्यूटी करनी है, पूरा उसका मैनेजमेंट इसके माध्यम से हो रहा है। दूसरा है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर, तो एक अगेन ये पोर्टल है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी जो होती है
1: जी
2: गांव की, म्यूनिसिपल वार्ड की, सब डिस्ट्रिक्ट की, उसके ऊपर हम उसको जियो रेफरेंस्ड ब्लॉक्स काट रहे हैं। मतलब एक ब्लॉक इनुमरेटर को दिया जाता है ना, तो जैसे दिल्ली में मैंने आपको बताया कि दिल्ली को हमने 46,000 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है,
1: जी
2: और ये 46,000 ब्लॉक जियो रेफरेंस्ड है। तीसरा जो हम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल्फ इनुमरेशन पोर्टल, जिसमें व्यक्ति अपना खुद का सेल्फ इनुमरेशन कर सकता है। और जो चौथा है, पहले बड़े बड़े फॉर्म लेके जाते थे हमारे इनुमरेटर, जिसमें वो डिटेल लिखते थे, वो सब अब सिर्फ मोबाइल फोन पे ऐप के माध्यम से वो डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं। वो उससे बहुत तेजी से डेटा इकट्ठा हो रहा है।
1: जी,
2: पहले 20-25 मिनट लगता था उसको भरने में फॉर्म को, अब हार्डली 10 मिनट लगता है।
1: जी,
2: 10 से 15 मिनट।
1: और व्यावहारिक तौर पर आपने बताया कि कुछ प्रश्न जो हैं वो और जोड़े गए हैं, लेकिन वो भी इसलिए कि बाद में बेहतर सुविधाएं दी जा सके।
2: हाँ, क्वेश्चन ज्यादा नहीं जोड़े गए 2011 के, उससे
1: जी
2: कुछ ही अमेंडमेंट हुए हैं। बहुत एक्चुअली क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट से उनकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है। एक हाई लेवल हाई पावर्ड कमेटी होती है,
1: जी,
2: वो डिसाइड करती है कि सेंसस में कौन से सवाल, कि कोई डिपार्टमेंट कहता था मुझे इसका चाहिए, डिटेल चाहिए।
1: जी, जैसे कई बार आम लोग जो हैं वो इस तरह की शिकायतें भी करते हैं कि इस एरिया में हमारे इतने लोग हैं लेकिन सीधी बस सुविधा कोई नहीं है, या हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो समस्या है, या बिजली पाने की दिक्कत है, ये होता है। तो हम एक विभाग को जानकारी दे रहे हैं लेकिन आगे ये कई विभागों तक पहुँचती है और कई बेहतर सुविधाएं हमें मिलती हैं, उसमें चिकित्सा सुविधा भी हुई, कई तरह के सरकारी डिस्पेंसरीज, ये सब। तो और इसीलिए सही जानकारी देना बहुत जरूरी
2: बहुत
1: है।
2: जी,
1: जी, अब जितेंद्र जी ये बताएं कि जब हम अपनी जानकारी देते हैं सेंसस के लिए, तो क्या इससे कोई आर्थिक लाभ भी होगा? कुछ लोगों के मन में ये बात है कि हमें बदले में सरकार से कुछ पैसा मिलेगा क्या, हम अपनी जानकारी दे रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो।
0: देखिए, सेंसस में कोई डायरेक्ट बेनिफिट पब्लिक के लिए नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो सेंसस एकमात्र सोर्स है जो वर्ल्ड लेवल, जो आपके अर्बन एरिया का सबसे जो लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है,
1: जी,
0: और रूरल एरिया में जो विलेज है, तो इतने लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे डेटा प्रोवाइड करती है। और जैसे हम बता रहे थे, सर भी बता रहे थे कि सेंसस 2 फेज में हो रही है। पहला फेज में हम हाउस लिस्टिंग करते हैं और हाउस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को भी कलेक्ट करते हैं, और सेकंड में पॉपुलेशन एनुमरेशन करेंगे, मतलब उतने वार्ड में उतने एरिया का वार्ड का जो भी होगा उसमें कितने लोग रहते हैं वो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं
1: जी।
0: सिमिलरली विलेज का भी, तो इतने छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे

0: जब ये गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा कि इतने घरों में, मे बी इतने नंबर ऑफ घरों में अभी एलपीजी कनेक्शन नहीं है, कि
1: जी
0: लैट्रिन फैसिलिटी नहीं है, कि इनके अभी भी जो मकान जो है वो कच्चा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे स्कीम के लिए
1: जी
0: शायद वो बेनिफिशियरी बन जाएंगे। और या तो आप, अगर आप देखेंगे उज्ज्वला योजना जो चल रही है अभी
1: जी
0: सरकार के द्वारा, तो उसमें जिस जिस घरों में अभी एलपीजी कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ के वो सब घर अभी यहाँ के लिए बेनिफिशियरी बन जाएंगे।
1: जी
0: तो ये एक डायरेक्टली कनेक्शन है सेंसस का डेटा एंड अवर गवर्नमेंट के पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो
1: जी
0: यहाँ पे आप एकदम डायरेक्ट बेनिफिट, जैसे आर्थिक जैसे आप बता रहे थे, वो ना देख के जितने लोग यहाँ पे सही तरीके से अपने पार्टिसिपेशन करेंगे और आंसर्स देंगे,
1: जी
0: उतने अच्छे पॉलिसी एंड प्रोग्राम बन सकती है देश के लिए, वो भी छोटे से छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे।
1: जी तो
0: जैसे आपको एक उदाहरण दें कि हम फेज वन में डिटेल
1: जी
0: इकट्ठी करते हैं कि किस तरीके का ईंधन इस्तेमाल होता है घर में, तो फिर हमारे पास पूरा डेटा है कि भारत के कौन से हिस्से में
1: जी
0: लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, कितने घरों में एलपीजी है, क्या है, हमारे पास डेटा है। तो उसके
1: जी
0: हिसाब से हम एक प्लान कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जरूरत है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, जैसे ड्रिंकिंग वाटर की है जी, तो हम पता करते हैं कि साहब कितने घरों में नल है, तो हमारे पास हमें ये मालूम पड़ जाता है कि साहब इस डिस्ट्रिक्ट का ये जो हिस्सा है, इन इन ब्लॉक्स में, वहां पर वो कुएं से पानी लाते हैं, किसी पोखर से पानी लाते हैं। तो फिर हम एक इंटरवेंशन स्कीम बना सकते हैं कि साहब यहाँ पे हमें लगानी है,
1: जी
0: यहाँ पे टैप वाटर पहुंचानी है। तो जैसे सीवर फैसिलिटी है, उसकी भी
1: जी
0: डिटेल हम इकट्ठी करते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि इस कॉलोनी में सीवर फैसिलिटी नहीं है। तो ये डेटा इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे बैंकिंग का हो गया जी,
1: जी
0: तो बैंकिंग का हमें मालूम पड़ गया कि साहब इस शहर में, इस शहर के पर्टिकुलर पार्ट में बैंकिंग बहुत कम लोगों के अकाउंट खुले हैं, तो उस
1: जी
0: हिसाब से स्कीम बन सकती है कि कैसे उसको प्रमोट किया जाए।
1: यानी ये जो डेटा है बहुत ही विस्तारित तरीके से सोचा जाता है इस पर, और किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया जाता
0: नहीं,
1: है, और जो सोचा जाता है वो पूरी सोसाइटी के बेनिफिट
0: बिल्कुल
1: के लिए सोचा
0: बिल्कुल
1: जाता है कि
0: बिल्कुल,
1: जिस चीज का अभाव है उसे हम दूर कर
0: हाँ
1: पाए।
0: जी
1: जी यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी अजय जी, आपने बातचीत में कहा कि टीचर्स जो हैं वो जाएंगे डेटा कलेक्शन के लिए।
0: आपसे एक चीज शेयर करूंगा, उनका काम बहुत अच्छा रहा है।
1: जी
0: सभी जो हमारे शिक्षक टीचिंग फ्रेटर्निटी से हैं,
1: जी
0: बहुत अच्छा काम हमारे पिछले सेंससेस में हुआ है। और चूंकि एक तो उन्हें अपने एरिया का आइडिया भी होता है,
1: जी
0: तो वो भी फैसिलिटेट होता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे इस बार हम वैकेशन के टाइम पे कर रहे हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी भी है,
1: जी
0: और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने।
1: जी
0: बाकी डिपार्टमेंट से भी लेते हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि टीचिंग फ्रेटर्निटी से।
1: जी तो जो भी शिक्षक सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने एरिया में आप सम्मानित व्यक्ति हैं और अपने एरिया को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी आपको
0: बिल्कुल
1: सौंपी गई है। जी तो इसी बात पर अजय जी, कौन सा एक गाना आप अगला हमें सुनवा रहे हैं?
0: साथी हाथ बढ़ाना,
1: जी बहुत ही प्यारा सा गाना है, और मुझे लगता है कि हमारे इस काम के लिए सभी साथियों का हाथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। सभी एक दूसरे का साथ देंगे तो ये एक बहुत बड़ा जो काम है वो आसानी से हो जाएगा।

0: तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जनगणना की। हमारे साथ कार्यक्रम में श्री अजय गर्ग, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी आप हैं और डायरेक्टर ऑफ सेंसस दिल्ली हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस में। और हमने अभी तक जाना कि जनगणना जो है ये क्यों जरूरी है, हमें अपनी ओर से क्या सहयोग करना है और कैसे सरकार जो है एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया इसके लिए अपना रही है, बहुत डिटेल में तैयारी की गई है ताकि हमारी सही जानकारी सरकार तक पहुंचे और बदले में हमें सुविधाएं मिले और साथ ही ऐसे फैसले लिए जा सके जो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मैं जितेंद्र जी आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि जो हमें फर्स्ट फेज में अपनी जानकारी देनी है उसके लिए जो ऐप है या वेबसाइट है कैसे करना है उसके बारे में आप हमें बताएं।
1: जी, ये पहला सेंसस है जहाँ पे सेल्फ एनिमिनेशन इंट्रोड्यूस हुआ है।
0: जी,
1: इससे पहले कभी ऐसे हुआ नहीं था। और ये जो जानकारी देने का जो URL जो पोर्टल है वो sec.census.gov.in, इसमें आप जाके
0: एक बार दोहरा दीजिए।
1: जी, SE फॉर सेल्फ एनुमरेशन डॉट सेंसस डॉट जीओवी डॉट इन।
0: जी,
1: इस पोर्टल में जाके आप अपने मोबाइल नंबर, घर का कोई भी सदस्य का मोबाइल नंबर से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं।
0: जी,
1: उसके बाद अपने पसंदीदा भाषा भी चुन सकते हैं। और उसके बाद आप अपने जो जानकारी जो है
0: जी,
1: जो हमारे पहला चरण में जितने भी 30 थे जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आप जाके अपने पसंदीदा भाषा में पढ़ के उसको आप अपना जवाब दे सकते हो।
0: जी,
1: और एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, एक बार आपने भाषा को चयन करने के बाद अब आगे जाके उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने अगर हिंदी अगर चुना है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसके पूरे जो आने वाले जो सवाल जो रहेंगे वो हिंदी में ही होंगे। और अगर किसी ने अंग्रेज अगर या तो इंग्लिश अगर उसने चुना है तो आने वाले सभी सवाल उसका इंग्लिश में ही मिलेगा।
0: जी,
1: तो जब भी अपना भाषा को वो चयन करे वो थोड़ा ध्यान से करे, क्योंकि आगे जाके वो चेंज नहीं कर सकते हैं वो। और ये सेल्फ एनुमरेशन का जो अभी टाइमलाइन जो है हमारे MCD एरियाज के लिए, 1 मई से लेके 15 मई, 15 दिन के अंदर आप अपना जानकारी अगर चाहेंगे तो इसी पोर्टल में जाके दे सकते हैं। और जैसे सर ने भी बताए थे कि एक बार आपने जानकारी आप इस पोर्टल में जाके देने के बाद 11 डिजिट का एक ऐसी ID जनरेट होगी। और इस ID को आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा। जब आपके घरों में एन्यूमरेटर विजिट करेंगे तो तब उनको आप ये ID दीजिएगा, ताकि इस ID के द्वारा वो आपका दिया हुआ जानकारी को वो फेच कर सकते हैं HLO ऐप में।
0: जी,
1: ये हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप जो है एक डिजिटल एक ऐप है जिसके द्वारा पूरे जानकारी इसी सेंसस में इकट्ठा होने वाला है।
0: HLO
1: ऐप, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप।
0: जी, और क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी है अगर कोई समझना चाहे इस प्रक्रिया को?
1: जी, इस बार सेंसस में जो हेल्पलाइन नंबर जो रखा गया है वो है 1855। तो अगर कोई दिल्ली के रहने वाले कोई व्यक्ति या तो कोई भी सिटीजन, अगर यहाँ पे से रहने वाले कोई भी पर्सन अगर इस नंबर पे फोन करेंगे सेंसस को लेके, अगर कोई उनके मन में कोई प्रश्न हो तो इस नंबर पे फोन करेंगे तो हमारे जो भी कंसर्न जो पर्सन है इस लाइन को जो हैंडल करते हैं वो उनको वो हेल्प करेंगे, वो सहायता करेंगे।
0: जी, उन्हें समझा भी सकते हैं कि कैसे एंटर करनी है डिटेल्स।
1: जी,
0: और अजय जी अब आपसे ये सवाल कि सच में जो लोग मुसाफिर हैं, ना घर है ना ठिकाना है, होमलेस लोग हैं जो जैसे बेगर्स भी हैं या कुछ उस तरह का काम करते हैं, फेरी वाले होते हैं कई लोग, या कोई उस तरह की स्थिति है, तो वो कैसे अपने आप को दर्ज करें, उन्हें क्या जानकारी देनी है?
2: जो होमलेस हैं तो होमलेस का जो उनका मकान सूचीकरण का तो नहीं होता है
0: जी,
2: जो दूसरा फेज होता है जिसको हम पॉपुलेशन एन्यूमरेशन कहते हैं, उस समय उनकी गणना होती है। तो उसमें एक दिन हमारा फिक्स होता है, अक्सर 28 फरवरी होता है, 28 फरवरी की रात को।
0: जी,
2: तो हमारे जितने एन्यूमरेटर हैं पूरे, जहां पर भी इन लोगों का हमारे पास, पहले हम लोग मैपिंग कर लेते हैं कि अधिकतर इन लोगों का यहाँ रहने का है, और फिर उनका

0: डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं
1: जी
0: इस तरीके से,
1: मतलब पे वो जहां भी जिस
0: जहां पर भी
1: रहते
0: वहीं पर
1: हैं,
0: वहीं पे फुटपाथ तो, पे जाते हैं हमारे लोग, पहले मैपिंग कर लेते हैं हम लोग
1: जी,
0: यहाँ फुटपाथ पे लोग रहते हैं वहाँ रहते हैं, तो फिर 28 तारीख की रात को शाम को वहाँ पर जाके सब लोग डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं होमलेस की।
1: तो अजय जी, आपसे बातचीत के माध्यम से और जितेंद्र जी ने जो बताया, हमने समझा कि सेंसस जो है वो कितनी जरूरी चीज है, और ये पूरी प्रक्रिया जो है बहुत लंबी प्रक्रिया है, जिसमें हमारा योगदान यही है कि हम अपने बारे में सही जानकारी दें, और जो भी हमारे घर पर आ रहे हैं वो एक विश्वसनीय पात्र हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको हम अपना डेटा दे सकते हैं, और ये डेटा पूरी तरह गोपनीय भी है, और हमसे कुछ ऐसी जानकारी नहीं पूछी जा रही है जिससे बाद में हमें कोई नुकसान हो सकता है, तो इतना भरोसा जो है वो रखना है।
0: बिल्कुल
1: जी। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब घरों में आएंगे, एक तरह का सर्वे ये हो रहा है, ऐसे में जो सवाल वो हमसे पूछेंगे, आम लोगों को जो जवाब देना है उन सवालों का, क्या पहले से वो पता कर सकते हैं कि कौन से सवाल हैं, और इसके अलावा कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो मना कर सकते हैं क्या?
2: जी बिल्कुल, जो सेंसस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहले से ही गैजेट में नोटिफाई होती है
1: जी।
2: तो जैसे अभी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए कुल 33 क्वेश्चन पूछा जाएगा
1: जी,
2: ये क्वेश्चन का सूची ऑलरेडी ये गैजेट में नोटिफाई हो चुकी है, और HLO स्टार्ट होने से पहले भी ये अपने न्यूज़पेपर में भी आप लोग देख सकते हो, कई बार न्यूज़पेपर में भी ये आती है ये
1: जी,
2: तो ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में भी होती है, और पब्लिक अगर जानना चाहेंगे तो गैजेट नोटिफाई जो किया गया क्वेश्चंस को भी वो अपने तरीके से जैसे इंटरनेट से भी वो लोग देख सकते हैं
1: जी,
2: और हर एक चीज पब्लिक में ही है, पब्लिक डोमेन में ही है, तो उनको भी सब कुछ पता रहता है शुरू से ही कि जो एनुमरेटर उनके घर में विजिट करेंगे तो वो कौन से सवाल पूछने वाले हैं, तो इसमें कहीं मिसयूज ऑफ उनका जो पावर आप या तो पोजीशन का यहाँ पे कुछ सवाल ही नहीं उठता है
1: जी। तो सवाल पहले से हमें
2: पता होता है
1: और उनके सही जवाब देने हैं। घरों में जब हम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो दिव्यांगजन हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, या न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनको नहीं गिना जाता है, तो क्या इनका भी बताना इनके बारे में जरूरी है?
2: जी देखिए, सेंसस में चाहे वो कोई भी जेंडर का क्यों ना हो, चाहे कोई भी एज का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी दिव्यांग या तो और कोई क्यों ना हो, हम सभी को गिनेंगे
1: जी।
2: और जैसे बताया गया है कि ये नॉर्मली रिसाइडिंग चाहे कोई भी एज का हो, चाहे कोई भी जेंडर का हो, हम उनको गिनेंगे। और इंडिया में ये हमेशा ये देखा गया है जो एल्डरली होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं मे भी कुछ दिनों के वो है, और या तो दिव्यांग, तो इनको हम जनरली छोड़ देते हैं। तो ये हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जब भी आपके घरों में एनुमरेटर आए और आपको ये पूछे कि आपके घरों में नॉर्मली रिसाइडिंग मेंबर की संख्या क्या है
1: जी,
2: तो आप जरूर इन सबको इसमें इंक्लूड करें
1: जी,
2: क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सही संख्या जो दिव्यांग हो या तो एल्डरली हो अगर नहीं पता चलेगा तो उनके लिए जो जरूरत की जो योजनाएं जो है वो नहीं बन सकती है
1: जी,
2: क्योंकि वो एक स्पेशल नीड के कैटेगरी के लोग हैं, और आप दूसरी भाषा में कैसे वो सबसे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं सोसाइटी के
1: जी,
2: एल्डरली के लिए उनके जेरियाट्रिक केयर की जरूरत होती है, डिजेबल पीपल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है कि और कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है, हेल्थ केयर हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है, तो ये एकमात्र के जरिया है जिसके द्वारा हम अपने घरों में जो रहने वाले ऐसे कैटेगरी के लोगों को बताएं ताकि गवर्नमेंट उनके लिए भी सही योजनाएं प्रोग्राम बना सकती है
1: जी, जी। एक आम धारणा रहती है जब जैसे मतदाता पहचान पत्र होता है तो जिन लड़कियों की शादी हो जाती है या जो लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं वो अपने मूल स्थान पर ही मतदान करना चाहते हैं, तो मतदाता पहचान पत्र में एड्रेस चेंज नहीं करते, और जब कभी गिनती होती है तो मूल स्थान पर ही करवाते हैं, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है,
2: बिल्कुल
1: है ना? आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर अपने आप को काउंट कर सकते हैं जी।
2: जैसे नॉर्मली रिसाइडिंग में हमेशा जो टेम्पररी ऑप्शन लोगों को भी गिना जाएगा
1: जी,
2: ये जरूरी नहीं कि जब एनुमरेटर घरों में जाए जितने नॉर्मली रिसाइडिंग के लोग सबके सब अवेलेबल हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता सभी केसेस में
1: जी।
2: तो अगर कोई अगर टेम्पररी एब्सेंट है, चाहे वो काम के लिए बाहर गए हैं या तो पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं कुछ दिनों के लिए, मैं बात कर रहा हूँ मैं, और या तो मे भी रिश्तेदारों में चले गए हैं, ऐसे लोगों को भी जो टेम्पररी एब्सेंट है बट वो दे आर द नॉर्मली रिसाइडिंग मेंबर ऑफ दैट हाउस होल्ड, तो उनको भी आप इसमें गिने
1: गिनेंगे उनको।
2: और कोई अगर गेस्ट है जो आपके घरों में मे भी कुछ दिन के लिए आए हैं
1: जी,
2: और मे भी कुछ दिनों के बाद

0: फिर से वापस चले जाएंगे अपने जहाँ से आए हैं, तो उनको आप एक्सक्लूड करें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम दिल्ली में ये जानना चाह रहे हैं कि सेंसस के दौरान, या तो आप कह सकते हैं जिस तारीख को ये डेटा पब्लिश होगी जो कि 1 मार्च 2027
1: जी,
0: तो उस तारीख में दिल्ली में कितने लोग नॉर्मली रह रहे हैं, ताकि इस नंबर के हिसाब से जो भी पॉलिसी जो भी प्रोग्राम बननी है वो बनेगी।
1: जी, आपने दिल्ली की बात की और जनगणना की जो तारीख है वो भी हमें बताई। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमें कुछ और राज्यों के बारे में बताएं।
0: जी बिल्कुल, देखिए जैसे हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमेशा ये समय सीमा दे रखा है कि अप्रैल से लेकर सेप्टेम्बर, इन महीनों में कोई 30 दिन में आप हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो दिल्ली के लिए जैसे MCD एरियाज के लिए अभी ये 16 मई से लेके, मतलब जस्ट हमारे सेल्फ एनुमरेशन खत्म होती है 15 मई, 1 मई से लेके 15 मई हमारे सेल्फ एनुमरेशन होगी
1: जी,
0: 16 मई से लेके 14 जून तक हमारे HLO होगी MCD एरियाज में
1: जी।
0: तो इस तरीके का बाकी स्टेट भी, बाकी यूनियन टेरिटरी भी ऐसे अपना टाइमलाइन भी पहले से ही वो नोटिफाई कर रखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर बताऊँ आपका पंजाब जैसे स्टेट में अभी 30 अप्रैल से लेके 14 मई ये उनका सेल्फ एनुमरेशन का पीरियड है
1: जी,
0: और उसके बाद 15 मई से लेके 13 जून उनका HLO का टाइम है। और आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे 7 मई से लेके 21 मई तक उनका सेल्फ एनुमरेशन है और 22 मई से लेके 20 जून उनका HLO का पीरियड है
1: जी।
0: हरियाणा का सेल्फ एनुमरेशन का जो पीरियड है वो 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल और 1 मई से लेके 30 मई उनका HLO का पीरियड है
1: जी।
0: तो ऐसे स्टेट अपने अपने सेल्फ एनुमरेशन और HLO का पीरियड को भी वो नोटिफाई करते हैं
1: जी,
0: तो पब्लिक को भी पता रहता है कि इसी टाइम में ही एनुमरेटर आएंगे, उसके बाद में भी कोई आएगा तभी उनको हमें जानकारी नहीं देनी है
1: जी।
0: तो सभी चीजें यहाँ पे क्लियर है कि कौन आएगा और उनको अगर पहचानने के लिए हमें क्या क्या देखनी है, जैसे सर ने बताया उनका आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए
1: जी,
0: और टाइमलाइन भी फिक्स है, क्या सवाल पूछा जाएगा वो भी फिक्स है
1: जी,
0: और आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है चाहे कोई भी हालत में हो
1: जी,
0: आप जो कहेंगे वो उनको रिकॉर्ड करेंगे, तो सभी चीजें यहाँ पे क्लियरली है। तो इसलिए पब्लिक को पूरे दिल से, मतलब तहे दिल से उनको यहाँ पे सपोर्ट करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करनी चाहिए ताकि सेंसस सही ढंग से हो पाए।
2: जी। चाहो तो दिल्ली और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी टाइमलाइन फिर से बता दीजिए।
0: जी सर, दिल्ली के लिए अभी जो MCD एरियाज जो है इसमें कुल 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं न्यू दिल्ली को छोड़ के, तो यहाँ पे अभी सेल्फ एनुमरेशन जो होगी वो 1 मई से लेके 15 मई तक और उसके बाद ही HLO होगी जिसका टाइमलाइन है 16 मई से लेके 14 जून
1: जी।
0: और राजस्थान का भी यही टाइमलाइन है, मतलब 1 मई से लेके 15 मई तक सेल्फ एनुमरेशन होगी, 16 मई से लेके 14 जून तक HLO होगी। उत्तर प्रदेश का जो SC जो सेल्फ एनुमरेशन का जो टाइमलाइन है वो 7 मई से लेके 21 मई एंड 22 मई से लेके 20 जून तक HLO होगी
1: जी।
0: हरियाणा का 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल सेल्फ एनुमरेशन होगी, 1 मई से लेके 30 मई तक HLO होगी। तो HLO हर जगह 30 दिन का ये फिक्स है ये टाइमलाइन।
2: HLO का मतलब है जहाँ पे एनुमरेटर घर घर जाएंगे
0: जी।
1: तो चलते चलते कौन सा गीत हम सुनवाएंगे अपने श्रोताओं को जितेंद्र जी?
0: चलते चलते मेरे गीत याद रखना।
1: वाह, तो कार्यक्रम के समापन पर बहुत अच्छा सा गाना आपने चुना है, चलते चलते आपको सुनवा रहे हैं यही गीत।

0: तो अजय जी, चलते चलते हमारे माध्यम से आप सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं सभी लोगों से सहयोग की अपील करना चाहता हूँ।
0: जी, तो बहुत बड़ी चुनौती ये सामने है, बहुत बड़ा काम है, और आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी जो दोस्त हैं, श्रोता मित्र हैं, वो समझ गए होंगे कि कितने लंबी प्रक्रिया है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो हमें भी अपनी ओर से सहयोग करना है, और जैसा अजय जी ने कहा कि सहयोग की अपील जो है वो विभाग हम सभी से कर रहा है। सही जानकारी दें, समय से जानकारी दें, सतर्क भी रहें, लेकिन साथ ही जो परस्पर भरोसा है वो बनाकर रखें, क्योंकि जो ये प्रक्रिया है जनगणना की, ये कहीं ना कहीं दीर्घकालीन उद्देश्य के साथ में है। इसके लक्ष्य यही है कि हमारा लाभ हो सके, हमें फायदा पहुंचाया जा सके। तो अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं आपको कहती हूँ, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें जनगणना के विषय में बहुत विस्तार से ये जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आभार आप।
0: जी, डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में ये पूरी प्रक्रिया आपने हमें समझाई, और अब हमें पता है कि कौन सी वेबसाइट है, क्या प्रक्रिया है, क्या तारीख है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो जानकारी आपने हमारी बढ़ाई है, उसके लिए आपके आभारी हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ, मैं नीलम मलकानिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
4: FM बैंड 102.7 MHz ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਬਾਕਸ ਨੰਬਰ 111।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

हां जी, आकाशवाणी रेनबो ते तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम होम स्वीट होम। अपनी दोस्त होस्ट आरजे रिया दे नाल ते इस प्रोग्राम दे विच दादी नानी मामी मामा दे बहुत सारे नुस्खे घरेलू गल्लां तुहाडे नाल मैं शेयर करूंगी। सो आगाज करदे इस प्रोग्राम दा प्रीतरपाल होना दी आवाज विच बहुत ही घरेलू जे प्यारे जे मिठे जे गाने दे नाल।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल

0: आपका।
1: हां जी, हाल चाल तो अड़े किवें ने, की हाल चाल ने, तो अड़े की कर रही हूँ की नहीं कर रही हूँ। उम्मीद है कि तुसी वधिया होवोंगे, खुश होवोंगे, जिंदगी नू मौजा माण के जी रहे होवोंगे, ते प्रोग्राम सुन रहे होवोंगे मिड डे मेलोडीज़ अपनी दोस्त ते होस्ट आर जरिया दे नाल, जिहदे विच इस सफर दे विच तुहाडे लई बहुत सारे पुराने गीत, पुराने हिंदी गीत तुहाडे लई लैके पेश होवांगे, ते नाल ही नाल उन्हां पुराने गीतां दे पिछे जो किस्से कहानियां ने, उह वी तुहाडे नाल जरूर सांझियां करूंगी इन द प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ विद योर फ्रेंड, योर दोस्त होस्ट आर जे रिया।

0: बम बम बम बम बम बम
1: तेरी गटरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गटरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गटरी में लागा चोर चोर

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: साठ साल के और तुम होगी पचपन की। बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
1: क्या क्या क्या?
2: हम जब होंगे साठ साल के और तुम होगी पचपन की, बोलो प्रीत निभाओगी ना।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे, बिल्कुल खुश होंगे, और यही तो हमारी चाहत है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसीलिए लेकर आते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, जिसको आप सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे अपने फेवरेट चैनल FM रेनबो पर। साथ ही साथ इसे आप सुनते हैं प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आज स्वागत कर रहे हैं अपने स्टूडियो में जाने माने लिवर स्पेशलिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस नई दिल्ली के फाउंडर, डायरेक्टर और चांसलर डॉक्टर प्रोफेसर शिव सरीन जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर रेडियो डॉक्टर में आपका, और नमस्कार।
2: थैंक यू शालिनी एंड थैंक यू आकाशवाणी मुझे बुलाने के लिए रेडियो डॉक्टर में।
1: थैंक यू, आप हमारे श्रोताओं के लिए आज समय निकाल कर आए हैं, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। बता दें अपने श्रोताओं को कि सर जो है स्वास्थ्य के शिक्षाविद भी हैं, और आपको आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचा पाए। आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप फोन नंबर आपको पता ही है, व्हाट्सएप नंबर मैं रिपीट कर दूंगी, आप दोनों माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डॉक्टर साहब से सीधे प्रश्न कर सकते हैं। फोन नंबर मैं एक बार बता देती हूं, 011-2342-1082, 2342-1082। व्हाट्सएप पर कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 9868107070 पर। आप क्योंकि लिवर के एक जाने माने स्पेशलिस्ट हैं, आपको सब जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज?
2: एक दिन से जिंदगी नहीं बदलती, हर रोज कदम लेना पड़ता है। जैसे आपको अगर कहीं पहाड़ी पे जाना है तो उससे पहले

0: गाड़ी इंजन सब तैयार रखते हैं, टायर में हवा है या पेट्रोल ठीक है, तो इसी तरह से ज़िंदगी की शुरुआत की जो जर्नी है उसमें ये देखें कि मेरी सारी चीज़ें ठीक हैं तो मैं आगे चलूं, और हर रोज़ एक कदम लेना पड़ेगा, एक कदम से काम नहीं। इसलिए वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल, हर महीने 19 तारीख याद रखिए, तो 12 बार तो वैसे ही याद हो जाएगा। हर महीने की 19 लिवर के लिए ज़रूरी है, और वर्ल्ड लिवर डे एक बार का इवेंट नहीं है, हर रोज़ का इवेंट है। अपने आप में रोज़ इन्वेस्ट करिए और लिवर को ठीक रखिए।
1: जी, तो ये डॉक्टर साहब का मैसेज रहा। अभी पूरा कार्यक्रम बाकी है, आप लोगों को रहना है हमारे साथ 4 बजे तक, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस वर्ष की थीम है सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिवर। इस पर भी बात करना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये थीम क्या है, व्हाट आर सॉलिड हैबिट्स?
0: सॉलिड हैबिट्स बहुत अच्छा थीम है। आप अगर देखें, याद करें कि हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की क्या सॉलिड हैबिट्स थी। हैबिट्स उनकी थी कि भाई रोज़ चलना है, कितना चलना है, दूसरा खाने में कितना पोर्शन लेना है, और व्रत रखना है, संयम रखना है, फास्ट करना है। सॉलिड हैबिट्स का यह मतलब है कि हैबिट का मतलब ये है कि जो चीज़ रिपीट होती हो, एक दिन की वो नहीं है, वो सिर्फ एक क्षणिक चीज़ नहीं है। तो हैबिट ऐसी हो जो सॉलिड हो और आपको सॉलिड बनाए। सॉलिड कैसे बनेंगे? लिवर को सॉलिड बनाएंगे, हैबिट को सॉलिड रखेंगे, जीवन सॉलिड होगा।
1: जी, तो सॉलिड जीवन के लिए लिवर को सॉलिड रखना है, सर ने बोला है। कैसे सॉलिड रखेंगे, बिल्कुल अभी आपको जानकारी पहुंचने वाली है। भाई आप हमारे साथ जुड़िए, फोन लाइंस खुल गई हैं, व्हाट्सएप मैसेज बॉक्स खुल गया है। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जुड़िए हमारे साथ। 2342-1080, 2342-1082 हमारे नंबर्स हैं। एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेंगे 4 बजे तक। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिव सरीन, निदेशक यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: वेलकम बैक। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ और हमारे साथ हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट डॉक्टर शिव सरीन। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए इनसे बात कर लेते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार सर। मैडम जी।
0: जी नमस्कार, स्वागत
1: है आपका। डॉक्टर साहब को नमस्कार। थैंक यू मैडम जी। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं गांव कुकनी डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से बोल रहा हूँ जी।
0: जी जी, प्रश्न करें डॉक्टर साहब से।
1: मैडम जी, पिछले साल मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था लीवर का, तो उसमें ग्रेड 2 फैटी लीवर बताया गया था। अभी दुखता है कई बार, जैसे कई बार सांस लेना तो यहाँ छत्ती में से और लेफ्ट साइड में दुखता है। और दूसरी बात है, मेरा भाई है उसको भी ग्रेड 1 का फैटी लीवर आता है अल्ट्रासाउंड में, वो उसको भूख नहीं लगती बिल्कुल भी। काफी दवाइयां खा ली भूख की, गाँव में से भी और वहाँ लोकल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या करनाल में वहाँ से भी। तो आप बताए जी, क्या किया जाए?
0: जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको। जी
2: देखिए, करनाल वालों को तो वैसे स्वस्थ रहना चाहिए, वो तो घर का खाते हैं और अपना काफ़ी वर्जिश भी करते हैं। आपको फैटी लिवर हुआ है, उसके दो कारण ध्यान से समझें। अगर माता पिता को शुगर है, बीपी है, हार्ट डिजीज़ है, कोई कैंसर है, तो आपको वो उनके जीन्स मिले होंगे, पहला काम। अगर हैं तो आपको ध्यान से रहना है और आपके बच्चों को भी। दूसरा, अगर फैटी लिवर आपकी आदतों से हुआ है, मतलब आपने इनकम ज़्यादा करी, खर्चा कम किया, खाना ज़्यादा खाया, मक्खन मलाई ज़्यादा ली, मीठा ज़्यादा लिया, तो वो सारा जमा हो जाएगा। तो दोनों में आपको ध्यान रखना है। दूसरे को आप बदल सकते हैं, पहले को नहीं बदल।

0: सकते। और फैटी लिवर ग्रेड टू को जरूर ध्यान से लेना है, इग्नोर नहीं करना, ग्रेड टू को ग्रेड वन करना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना लिवर, एक तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपका, अगर आपने ज़्यादा कमाई की तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए खर्चा ज़्यादा कमाई कम, वज़न घटाना है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। और दूसरे जिनका ग्रेड वन है उनको तो बिल्कुल ठीक होना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, फैटी लिवर को निकालना है।
1: जी, फैटी लिवर बहुत आजकल हो रहा है, हम बहुत आम सुन रहे हैं इसके बारे में। थोड़ा सा और जानकारी थोड़े आगे कार्यक्रम में हम जरूर चाहेंगे डॉक्टर साहब बताएं, पर हमारे श्रोता क्योंकि फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: हाँ जी नमस्ते,
1: जी, नमस्ते।
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
0: नमस्ते।
2: मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, लिवर, जैसे लिवर में गर्मी हो गई है तो लिवर को सही रखने के लिए क्या करें, और इसका चेकअप कैसे करवाएं कि लिवर सही है और खराब है?
0: देखो, जैसे अपने दिमाग पे गर्मी चढ़े तो आप ठंडा पानी डाल लो, सिर पे एक ठंडा तौलिया लगा लो, वो तो ठंडा पहुंचा देता है। लिवर को भी ठंडा करने का आसान तरीका है। ठंडा का मतलब है कि आप उस पे बोझ ही ना डालो। बोझ नहीं डालेंगे आप, लिवर को हल्का रखेंगे तो लिवर में गर्मी नहीं आएगी। मतलब खुराक कम लेंगे, जितना खाना आपको खाते हैं उसको थोड़ा सा कम करेंगे, धीरे धीरे खाएंगे, और शुगर, चीनी वाली चीज़ें कम करेंगे, और फैट, चर्बी वाली भी कम करें, तो लिवर में गर्मी नहीं आएगी। और हाँ, उसको चलाने के लिए कई और काम, जैसे हलासन कर सकते हैं, पेट की गर्मी को निकालने के लिए लंबा वॉक कर सकते हैं, तो मुझे लगता है आप ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल पॉजिटिव आपको बता रहे हैं डॉक्टर साहब, आप ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, और जो डॉक्टर साहब बताएंगे पूरे कार्यक्रम के दौरान उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है ना सर?
0: जी बिल्कुल।
1: तो चलिए, बहुत सारे मैसेजेस भी हमारे पास आ गए हैं, और अभी फैटी लिवर की बात हो रही थी, हमारे एक श्रोता ने फैटी लिवर के बारे में पूछा था, तो मैसेज आया है डॉक्टर साहब। परिधि हैं दिल्ली से लिख रही हैं, नमस्ते शालिनी जी एंड डॉक्टर सरीन, थैंक यू टू रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम फॉर ब्रिंगिंग ग्रेट टॉपिक्स एंड कनेक्टिंग अस टू द रिनाउंड डॉक्टर्स एवरी डे। माई क्वेश्चन इज इट कॉमन टू हैव फैटी लिवर एट द एज ऑफ 30 ईयर्स, वॉट आर इट्स लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स?
0: अरे जी, बहुत अच्छा है, दिल्ली में आप जैसे अगर नागरिक रहेंगे तो दिल्ली वाले स्वस्थ हो जाएंगे। 30 पे फैटी लिवर है और आपको इसकी जानकारी है, आप भाग्यशाली हैं। अगर आपको नहीं पता लगता, शायद 40 या 45 पे तो हो सकता था और बीमारियां आ जाती हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह। इस समय फैटी लिवर होना अनकॉमन नहीं है। दिल्ली के हमने करीब 18 से 25 साल के 40,000 से ज़्यादा यंग एडल्ट्स को स्क्रीन किया, एंड बिलीव मी, 28% लोगों के अंदर फैटी लिवर निकला, और उससे ज़्यादा अगर एज में जाएंगे तो लगभग 1 in 2 को फैटी लिवर मिलता है। चिंता की बात यह है कि लोगों को पता होता है और कहते हैं क्या करना है साहब, उसके भी तो फैटी लिवर है, उसके भी फैटी लिवर है। हेयर इट इज़ नीडेड, माइंड सेट हैज़ टू चेंज। अगर आपके घर में, इंस्टीट्यूशन में कहीं जरा सी आग लगती है तो तुरंत भागते हैं, फायर अलार्म। थिंक दैट फैटी लिवर इज़ ए फायर अलार्म फॉर कमिंग बैड डिजीजेज लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड मैनी अदर्स। सो रिमेंबर, फैटी लिवर को इग्नोर नहीं करना है। आज का दिन, 19 अप्रैल का दिन याद रखते हुए फैटी लिवर के लिए चैलेंजेस को ओवरकम करना है।
1: जी, पर डॉक्टर साहब, फैटी लिवर पहले इतना नहीं सुनने में आता था, क्या अवेयरनेस नहीं थी, होता नहीं था, कि अब बढ़ गया है, कोई कारण है इसका?
0: हाँ, अब डेफिनेटली बढ़ गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप देखेंगे कि मोटापे की संख्या पहले भारत में कम थी, अब लगभग 10 में से 3 या 4 लोगों को मोटापा है। इसी तरह फैटी लिवर की भी इंक्रीज हो गई है। तो जो जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, सबसे बड़ा कल्प्रिट, सबसे बड़ा दुख जिसे मिला है वो लिवर को है। तो लिवर की डिजीजेस बढ़ने लगी हैं। दूसरा, अवेयरनेस भी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ एज ए डॉक्टर कि आप लोग फैटी लिवर की स्टेज को डायग्नोस कर पाएँ और डायबिटीज़ को आप बचा लेंगे। जो ही फैटी लिवर ठीक हुआ, डायबिटीज़ प्रोबेबली नहीं होगी।
1: जी, हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, कॉलर है हमारे साथ। हेलो
3: हेलो, नमस्कार शालिनी जी,
1: जी
3: मैं मिसेस बेदी बोल रही हूँ।
1: नमस्कार, स्वागत मिसेस बेदी कार्यक्रम में।
3: मैं शालिनी जी, एक गिला है, बहुत देर की मेहरबान से आते कहाँ खुश, और डॉक्टर साहब बहुत नमस्कार आपको।
0: नमस्कार।
3: जिस लाइटर वेट में आप हमें जवाब दे रहे हो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं 76 ईयर में हूँ और 36 साल से डायबिटिक हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, ना मैं जंक फूड खाती हूँ ना कुछ, मतलब नॉर्मल डाइट खाना भी एक टाइम रात को खाती हूँ, वैसे सैलेड्स वगैरह खाती रहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ मुझे क्या नहीं खाना चाहिए, कि मेरी डायबिटीज

0: वे ठीक रहे।
1: देखिए अभी तो आपको 24 साल और निकालने, ये तो हिंदू धर्म है और हिंदू का ये धर्म है कि शतायु भवो, तो होना ही पड़ेगा आपके। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, दांत असली हैं कि दांत नकली हैं?
0: मेरे 6-7 इम्प्लांट पड़े हुए हैं,
1: बाकी तो असली है ना। हड्डियां भी ठीक रखनी है आपने, हड्डियां हाँ। भी ठीक रखनी है। डायबिटीज में 2-3 चीजें जो बिगड़ जाती हैं, एक तो लिवर सबसे पहले और दूसरा हड्डियां हैं और बाकी चीजें। पर याद रखिए, अगर आप शरीर को चलता फिरता रखेंगे, हरकत रखेंगे, तो बरकत ही बरकत रहेगी। नहीं क्या खाना है क्लियर है उसके अंदर आपके लिए। आपको शुगर की चीज़ें डेफिनेटली मना की हैं, नट्स आपको ऐड करने हैं खाने के अंदर, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करनी।
2: हमारे पास मैसेज भी आया है, मैं अभी देख रही थी, तो वो भी फूड के बारे में ही बात कर रहे हैं। हेमंत जी हैं, लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर, प्लीज बताइए कि कौन सा फूड लिवर को हैप्पी रखता है एंड व्हाई फैटी लिवर अकर्ड। तो वही आप कुछ अभी बता रहे थे कि कौन से
1: मतलब
2: फूड
1: आप हैप्पी होना चाहते हैं या लिवर को हैप्पी रखे। देखिए लिवर हैप्पी रहेगा, लिवर को प्यार करेंगे, संभाल के रखेंगे, तो आप भी हैप्पी रहेंगे। हर रोज सुबह उठेंगे, यार क्या बढ़िया दिन है आज, आज तो बहुत खुश मिजाज हूँ मैं। इसलिए लिवर आपकी इम्यूनिटी को, आपके रंग रूप को, गोरे रंग को, सबको बनाए रखता है। लिवर के लिए हैप्पी रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अनकुक्ड फूड खाएं, मतलब आप ओरिजिनल फूड खाएं, उसको चेंज करके ना खाएं। जैसा नेचर ने बनाया है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं डेफिनेटली, जितनी ज़्यादा ग्रीन या रेड होगी उतनी अच्छी होगी। लो शुगर के फ्रूट्स लें, जैसे आपका सेब है, अमरूद है। खाने में बहुत सारे प्याज लहसुन जो हम भूल जाते हैं, मूली है, टमाटर है, गाजर, ये सारे लिवर के लिए अच्छे। स्पेशली जो अच्छी चीज़ें हैं उसमें है कच्ची हल्दी, कच्ची मरी हुई नहीं, कैप्सूल बना के नहीं, निचोड़ के नहीं, पीस के नहीं, कच्ची हल्दी। या आप वॉलनट्स ले सकते हैं, लस्सी बहुत लिवर के लिए अच्छी है। और हाँ मिलेट्स, जिसमें रागी, ज्वार, बाजरा, जिसमें कि लो शुगर रिलीज है, ये सारे लिवर के लिए हेल्दी फूड है। सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्दी फूड है कि कम खाएं, जितनी पेट में जगह हो उसका 60% 50% ही है, बाकी छोड़ दें। और साथ में पानी ना पिएं,
2: साथ में पानी नहीं पीना है। और पानी कितना पीना चाहिए डॉक्टर साहब?
1: पानी दिन में जितना, लगभग 2-3 लीटर तो पी ही लेना चाहिए, पर खाने के 1 घंटा पहले तक लें, खाने के 1 घंटे बाद तक बिल्कुल पानी ना लें, क्योंकि खाने को हजम होने के लिए एसिड का होना जरूरी। एसिड से खाना टूटता है, पचता है, पानी पिएंगे तो फट से नीचे चला जाएगा पेट से, आंतों में, बिना हजम किए, वो खाना फायदेमंद नहीं रहेगा, वो सारा जंक फूड ही हो जाएगा।
2: ओके, पर जितनी प्यास लगे उतनी ही
1: ना, जितनी प्यास लगे उतनी
2: जी। हमारे साथ एक कॉलर हैं हमारे फोन लाइन पर। हेलो,
3: नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार जी
3: डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 40 वर्ष है और मुझे 10 साल से मेरा लीवर फैटी है और मेरे अभी इस टाइम 6 महीने से हाथ पैरों में कंपन होती है, क्या ये लीवर की वजह से होती है?
1: आपने कारण है ब्लड प्रेशर चेक कराया? बीपी,
3: ब्लड प्रेशर वही तो मेरा सब ठीक है, कल मैं सीटी स्कैन करवाने गया था।
1: हाँ, हाँ।
3: तो आज आपका प्रोग्राम था तो उसकी तो रिपोर्ट आई नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कंपन जो हो रहा है पैरों में उसी की वजह से हो रहा है?
1: देखिए ये कहना तो मुश्किल है, पर हाँ मुझे लगता है कि डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, जो लिवर अगर 10 साल से फैटी है तो शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों हो सकते हैं। उनका ध्यान करें, बराबर सुबह शाम बीपी थोड़े दिन चेक कराएं, हाथ में कंपन के लिए ज़रूर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। लिवर से नहीं है, पर लिवर में फैट होने से बाकी बीमारियां होती हैं, इस कारण जरूरी है। मैं एक सिंपल, जैसे लिवर के अंदर फैट है तो लिवर से उसके अंदर मरीज करीब 2-5% की डेथ होती है साल में, पर लिवर की फैट से हार्ट डिजीज 15% लोगों की डेथ होती है। मतलब जिसकी डेथ हार्ट डिजीज से हुई है वो 15% लिवर के कारण हुई।
2: डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे आपने शुरू में भी बोला कि लिवर अगर खुश रहेगा तो हम खुश रहेंगे, तो लिवर इतना इम्पोर्टेंट है कि उससे और बीमारियां हाँ, हो सकती हैं?
1: मैं सिंपल भाषा में बताऊं, जैसे अगर आपके लिवर में 5 पैसा फैट है, 5% फैट है, तब तक तो लिवर हेल्दी है। मतलब 1500 ग्राम का लिवर होता है, उसका 5% मतलब 75 ग्राम तक लिवर में फैट हो सकती है। पर अगर 10% हो जाए, 150 ग्राम तक लिवर के अंदर फैट हुई, तो वो बिगड़ जाता है, काम का नहीं। ऐसे लिवर में क्या खराबी हुई, जो लिवर का सेल है उसमें इंसुलिन नहीं घुस पाती, और इंसुलिन के बिना हम जो खाते हैं उसको एनर्जी में नहीं बदल सकते, तो इंसुलिन की जरूरत हुई और इंसुलिन बनाई, थोड़ी और इंसुलिन

0: नहीं, क्योंकि लिवर के अंदर एनर्जी बनानी है, और धीरे धीरे पैंक्रियाज थक जाता है और डायबिटीज़ बन जाती है। और लिवर में जो फैट है वो लिवर में नहीं रहती, लिवर से बाहर निकलती है, और बाहर निकल के खून में आती है। आप टेस्ट कराते हो, जी मेरी शुगर ज़्यादा है, आप देखते हो मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आया कहाँ से? वो सारा लिवर से आया, और इसलिए ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और ब्रेन के ट्यूमर्स, पेट के ट्यूमर्स, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारे लिवर की फैट से बहुत क्लोजली रिलेटेड है।
1: तो मतलब ये बाकी अंगों को भी प्रभावित इतना ज्यादा करता है। नहीं तो जैसे एक आम धारणा होती है कि आज लिवर पे बात कर रहे हैं तो ठीक है, लिवर को हेल्दी रखने के लिए डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे, लेकिन अगर और बीमारियां भी हैं तो उनका भी सॉल्यूशन कहीं ना कहीं यहीं
0: निश्चित
1: पर
0: रूप
1: है।
0: से है, निश्चित रूप से
1: जी
0: बहुत बड़ी लार्ज स्टडीज के अंदर है। अच्छा, गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, वो भी लिवर से है। लिवर में चर्बी थी, चर्बी निकली, पित्त के जरिए गॉल ब्लैडर में गई, वहाँ उसने स्टोन बनाया। तो हर गॉल ब्लैडर स्टोन वाला, हर डायबिटीज़ वाला, हर बीपी वाला, हर शुगर या आपके हार्ट प्रॉब्लम वाला, सब अपना लिवर चेक कराएं, बच्चों के लिए अपना खानदान को ठीक रखें।
1: क्या ये जैसा आप कह रहे हैं खानदान को ठीक रखें, तो क्या ये आगे भी पास होती है, क्या ये
0: हाँ,
1: जेनेटिक्स से रिलेट हो जाती है?
0: बहुत स्ट्रांगली जेनेटिक है।
1: अच्छा
0: हाँ, मैं इसको सिंपल समझाऊं कि अगर माता पिता को शुगर है, फॉर एग्जांपल माता पिता दोनों ओवरवेट हैं,
1: जी जी
0: ये बहुत बड़ी स्टडी करीब 70 लाख लोगों की अमेरिका से छपी 2024 में, कि अगर मदर और फादर दोनों ओबीज हैं तो करीब 93% बच्चे ओवरवेट होंगे।
1: अच्छा
0: मतलब बच्चे की क्या गलती है भाई, उसने थोड़ी चुना था कि मुझे इस घर में पैदा होना, वो माता पिता ने पैदा कर दिया। तो अब वो बच्चा भी मोटा हुआ, वो बेचारा जब 5 साल तक का होगा उसके हार्ट के अंदर फैट जमा होने लग जाएगी। अगर मदर फादर दोनों पतले हैं तो सिर्फ 3% बच्चे मोटे होते हैं। तो याद रखें, बच्चे पैदा ही नहीं करने, करने हैं जब मैं हेल्दी होऊंगा, नहीं तो नहीं करने, नहीं तो आप अपना तो करोगे, देश का भी नुकसान करोगे।
1: जी, तो ये प्रण तो आज लिया जा सकता है। आज का दिन बहुत खास है, वर्ल्ड लिवर डे है, और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप इस तरह की चीजें अपनाइए कि या तो आप खुद फिट हो जाइए पहले, उसके बाद आगे जो अपनी पीढ़ी को बढ़ाने की सोचिए,
0: बिल्कुल,
1: अदरवाइज दिस विल पास टू द
0: यस।
1: जनरेशंस। ओके, हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो
2: नमस्ते मैडम।
1: जी, नमस्कार।
2: मैंने डॉक्टर साहब ने लीवर के बारे में शुरू में बताया होगा ना, तो मैं थोड़ा कार्यक्रम लेट से सुना
1: जी,
2: हूँ।
1: अब आप कहीं मत जाइएगा, सुनिए, अभी कार्यक्रम काफी बाकी है। कुछ पूछना है आपको?
2: हाँ, पूछना है
1: जी पूछिए।
2: डॉक्टर साहब, एक बात पूछना है सर।
0: जी, बताएं सर।
2: अच्छा, ये है कि जैसे हमको कैसे पता चलेगा कि लिवर में तकलीफ हो रहा है, तो उसके लिए हम सामान्य आदमी को कैसे महसूस होगा कि
1: सिम्टम्स
2: हमारा लिवर कम काम कर रहा है?
0: आप अभी तो स्वस्थ हैं।
2: अभी तो सही स्वस्थ है सर। और
0: तो
2: दूसरी बात यह है कि जो बाजार में लिवर का टॉनिक मिलता है मेडिकल स्टोर में, तो वो कहाँ तक उसका यूज करना कहाँ तक ठीक है?
0: देखिए, अगर अभी तक स्वस्थ हैं तो एक बार कंफर्म कर लीजिए, उस पर स्टैंप लगवा लीजिए कि आपका वजन ठीक है, आपकी कमर की नाप ठीक है, आपका 90 सेंटीमीटर या उससे कम कमर होनी चाहिए, तो आप स्वस्थ हैं, लिवर में चर्बी होने की संभावना कम है। दूसरा, अगर आप थकते नहीं, काम पूरा अच्छे से कर लेते हैं, और आपका ब्लड टेस्ट में एक सिंपल टेस्ट होता है SGPT, जो करीब 20-30 रुपए में हो जाता है, तो SGPT नॉर्मल है कि नहीं। जैसे सबको हीमोग्लोबिन पता है कि जी मेरा खून जो है लाल है, हीमोग्लोबिन मेरा 15 है, तो उसी तरह SGPT का टेस्ट जो है वो कराएं। अगर वो 30 से कम है तो आपके लिए मतलब लिवर में कोई ऐसी सोजिश नहीं। एक बार अल्ट्रासाउंड भी करा लें कि लिवर में फैट है या नहीं। तो एक बार ये पक्का हो जाए कि मेरा वेट ठीक है, मेरी कमर ठीक है, मेरा SGPT नॉर्मल है, शुगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, और मेरा लिवर हेल्दी है, उसके बाद में अब फिर आपकी जिम्मेदारी है कि बाकी ज़िंदगी में लिवर को मुझे नहीं बिगड़ने देना है। बाजार के अंदर लिवर के टॉनिक मिलते हैं, कई चीज़ें मिलती हैं, पर उनका रंग रूप जो है ना वो काम का नहीं होता। लिवर का एक ही टॉनिक है, वजन कम, खुराक ठीक और डेली वर्जिश, और कोई लिवर के लिए टॉनिक नहीं है।
1: जी, बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं डॉक्टर साहब, और मुझे अच्छा लग रहा है कि यंगस्टर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जो कार्य रेडियो डॉक्टर करना चाहता है इतने सालों से वो हम अचीव कर रहे हैं, कि अवेयरनेस ही हमारा उद्देश्य है, और हम कई सालों से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और आज खुशनसीबी है कि डॉक्टर साहब ने समय निकाला है। ऐशानी लिख रही है दिल्ली से कि मैं 25 साल की हूँ। नमस्ते शालिनी जी एंड डॉक्टर सरीन जी, बिग शाउट आउट टू शालिनी मैम फॉर होस्टिंग रेडियो डॉक्टर, और चलिए धन्यवाद इतनी तारीफ करने के लिए। लेकिन प्रश्न जो उन्होंने किया है वो ये किया है कि क्या कुछ नए और एडवांस्ड

0: प्रिकॉशनरी टेस्ट अवेलेबल हैं सर की, जिससे हम लिवर की हेल्थ को चेक कर सकें?
1: एडवांस टेस्ट बहुत अच्छे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है सिंपल प्लेटलेट। अगर आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स 1,50,000 से ज़्यादा हैं तो खुश नसीब हैं। फिर लिवर के टेस्ट होते हैं AST, ALT या SGOT, SGPT जो सिंपल LFT टेस्ट में आते हैं। इनके हिसाब से एक फॉर्मूला निकलता है जिसे हम कहते हैं FIB-4। फाइब्रोसिस 4 निकालने के लिए चार चीज़ें चाहिए होती हैं, तो FIB-4 का फार्मूला कैलकुलेटर नेट पर होता है। तो एक टेस्ट है FIB-4, सिंपल ब्लड टेस्ट से आप पता लगा सकते हैं। दूसरा एडवांस टेस्ट है फाइब्रोस्कैन या लिवर स्टिफनेस का। अगर लिवर आपका फैट है उसमें तो वैल्यू 232 250 से ऊपर होती है, जिसे हम कैप कहते हैं, कंट्रोल्ड अटेन्यूएशन पैरामीटर कैप। और अगर 290 से ज़्यादा है, मतलब लिवर में करीब 30% से ज़्यादा फैट है, मतलब 60% भी हो सकती है। दूसरा एक एडवांस टेस्ट जो मैं कहूँगा उसे एल्फ कहते हैं, ELF, महंगा टेस्ट है ये। जो है आपका एक्सटेंडेड लिवर फाइब्रोसिस पैनल बताता है कि लिवर में फाइब्रोसिस है कि नहीं। तो लिवर के टेस्ट दो तरीके हैं, फैट का होना, फैट से सोजिश का होना। फैट का होना अल्ट्रासाउंड से पता लगे, लिवर में सोजिश होना, इंजरी होना, SGPT से पता लगेगा कि भाई 40, 50, 60 हो गया। और फाइब्रोसिस का होना कि मतलब सोजिश आई और उसके बाद में लिवर के अंदर स्कारिंग हो गई, वो पता लगेगा FIB-4 या फाइब्रोस्कैन से। तो लिवर के स्टेजेस जो हैं फैट, फैट प्लस इन्फ्लेमेशन, फैट इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस, और लास्ट स्टेज फाइब्रोसिस की है वो सिरोसिस है। और सिरोसिस के मरीज में कैंसर का होना भी काफ़ी कॉमन हो गया। भारत में एक्चुअली डायबिटीज के देखें तो सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस डायबिटीज वालों के अंदर होते हैं। 100 में से करीब 40% जो लिवर कैंसर हैं वो डायबिटिक्स में। अगर हम 100 लिवर कैंसर के केस लें तो 40 डायबिटीज वाले। तो मेरे माध्यम से मैं चाहूंगा कि जिन लोगों को डायबिटीज है जरूर जरूर जरूर लिवर चेक कराएं।
0: जी, और जैसे इनकी अभी उम्र कम है डॉक्टर साहब, तो कब से शुरू करने चाहिए ये प्रिकॉशनरी टेस्ट?
1: पैदा होते।
0: अच्छा,
1: कभी भी आपने सोचा है कि मेरी गाड़ी टक्कर लग जाए उसके बाद में ठीक करो?
0: नहीं तो
1: नहीं ना, गाड़ी पहले तैयार रखें। आपके लिए एक और
0: 25 साल हो जाने चाहिए,
1: बिल्कुल हो जाने चाहिए, एल्फ की जरूरत नहीं। पर 25 साल है, आपको 3-4 साल का और मौका है कि आप हड्डियां मजबूत कर ले। 29 साल एक ऐसी एज होती है जबकि हम हड्डियों को देखते हैं, 29 के बाद हड्डियों का धीरे धीरे ग्रोथ कम हो जाता है। तो अपने आप पे खूब मेहनत करें, आपका बोन का जो बैंक है, जो बोन्स हैं उनको इतना स्ट्रांग बनाएं कि यू आर 5 ईयर्स यंगर देन एनीबडी एल्स। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, हमेशा 25 या उससे कम रहिए।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से जानकारी हम सब तक पहुंचाने के लिए। डॉक्टर साहब, एक जो हमारे श्रोता थे जो अभी लाइन पर आए थे, उन्होंने कोई बात की थी कि लिवर के लिए कोई लिक्विड भी मिलता है, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि कोई सप्लीमेंट या प्रोबायोटिक ड्रिंक्स या प्रोटीन बार्स, एनर्जी ड्रिंक्स, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, क्या ये चीज़ें लेना कहीं से लाभ होता है या नुकसान हो सकता है?
1: देखिए, लाभ के लिए तो कोई ऐसी स्टडी नहीं है, लोगों की एक दूसरे से कहने से है। पर हाँ, मैं जरूर कहूँगा सत्तू ले लें।
0: अच्छा।
1: कलौंजी ले लें आप, ऐसी चीज़ें जिस आम का पन्ना ले लें, विनेगर ले लें, सिरका ले लें। ये चीज़ें जो टाइम टेस्टेड सेंचुरीज की हैं वो दो तरह से लिवर को फ़ायदा करती है। एक, आंतों के जो बैक्टीरिया जो हेल्पफुल है, हम जो खाते हैं वो हम नहीं खाते, सारा बैक्टीरिया प्रोसेस करता है। 1.5 किलो आंतों में बैक्टीरिया होता है, जितना लिवर का वेट है उतना ही बैक्टीरिया का वेट। आपने खाना खाया, आपने सोचा पेट में गया, पेट कुछ नहीं करता, वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं उस खाने को बदलते हैं, आंतें एब्जॉर्ब करती हैं और लिवर तक उसको पहुंचाते हैं।
0: तो ये जो गुड बैक्टीरिया,
1: और गुड बैक्टीरिया कैसे बढ़ाएं, मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें जो विनेगर है या इस तरह के जो हमारे ओरिजिनल कलौंजी वगैरह हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। बटर मिल्क है, लस्सी है, ये काम की चीज़ें। और कोई लिवर टॉनिक नहीं होता। मैं क्लियरली इस बात को, आपके मिथ को, आपने कहा प्रोटीन बार्स, अरे भाई क्यों नहीं चने खा लेते सस्ते? क्यों आपको ज़रूरत है कि प्रोसेस्ड फूड ले? एनी थिंग इन विच द नेचर ऑफ द फूड इज चेंज्ड, जैसे आपका खाना था चना पर आपने उसका कुछ और बना दिया, इसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। तो प्रोटीन हैज बीन कन्वर्टेड टू समथिंग एल्स। सो आई एम नॉट सेइंग प्रोटीन बार्स आर बैड, बट आई एम सेइंग यू कैन हैव बेटर ऑप्शंस विद नेचुरल।

0: और रीजनल फूड्स।
1: शायद सर आजकल जो जमाना है इतना तेजी से बदल रहा है, आजकल जो होम डिलीवरी का एक चलन हो गया, पैकेज फूड की तरफ लोगों का रुझान हो गया कि लेके रख लो, बनाएगा कौन, करेगा कौन, एक थोड़ा सा लाइफस्टाइल में बदलाव तो आया है, तो
0: इट
1: मे
0: अ
1: बी
0: मी
1: इसका
0: अगेंस्ट द रेस्ट, मैं अकेला, बाकी सारे लोग हैं, पर मैं अपनी आवाज नहीं बदलूंगा ना अपने विचार, क्योंकि ये साइंटिफिक है। मैं चाहूंगा कि आप लोग धीरे धीरे इसको सोचें, समझें। प्रोसेस फूड घर का क्या, जैसा मैं तो घर का ही खाता हूँ, पर घर में क्या खाते हो वही सारी
1: जी
0: चीजें प्रोसेस करते हैं। हाई कुकिंग है, ट्रांस फैट है, फैट बदल के ट्रांस मतलब ट्रांसफॉर्म हो गई किसी और फॉर्म में, वो फायदेमंद चीजें। प्रोसेस फूड्स, कितनी बार वो ऑयल यूज होता है, प्लीज रिमेंबर पुट करेक्ट पेट्रोल इन योर टमी। गाड़ी खराब नहीं करते, क्यों पेट खराब करते हो?
1: जी तो आप सब जो कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, डॉक्टर साहब ये मैसेज दे रहे हैं, तो अब आप अगर कुछ खाएं तो जरूर सोच लें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि जो आप खाएंगे वही आप बनेंगे। तो आप अगर बाहर खा रहे हैं तो प्लीज देख लें कि किस तरह का तेल है, किस तरह की चीजें उसमें इस्तेमाल की जा रही है, या क्या आप ऑर्डर कर रहे हैं। हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो
2: हाँ जी, नमस्कार मैम।
1: जी, नमस्कार
2: जी, रविंद्र कुमार भट्ट बोल रहा हूँ, दिल्ली से, नारायणा।
1: जी जी पूछिए, क्या पूछना है आपको।
2: पेट नहीं साफ रहता है, 2-3 सालों से बहुत समस्या होती है। चून वगैरह का प्रयोग करता हूँ तो जब तक खाता हूँ जब तक सही रहता है, फिर इसके बाद वही समस्या आ जाती है। और ड्यूटी मेरा शिफ्ट वाइज है, जब मैं दोपहर की शिफ्ट करता हूँ मतलब 2 से 10 वाली, रात खाना खाता हूँ, सुबह 10 बजे सो के उठता हूँ, उस दौरान तो सही रहता हूँ,
1: जी
2: लेकिन जब मॉर्निंग या नाइट ड्यूटी करता हूँ तो पेट साफ होने में बड़ी समस्या होती है। क्या ये लीवर की समस्या हो सकती है?
0: देखिए, लिवर की समस्या तो आपकी नहीं लगती है डायरेक्टली, पर हाँ आदतों से आप थोड़ा सा परेशान हैं। याद रखिए कि अगर आपकी नाइट शिफ्ट हो या डे शिफ्ट हो, पेट साफ करने के लिए चलना ज़रूरी है। आप चलेंगे, आंतें चलेंगी, बैठे रहेंगे, आंतें बैठ जाएंगी, मोशन नहीं होगा। दूसरा, खाने के अंदर फाइबर का प्रयोग ज़्यादा करें, जो रॉ मटेरियल है, जैसे आपने छिलका उतार के फल खाया या छिलका उतार करके आपने सब्जी ली, उसका फ़ायदा नहीं। तो जो फाइबर वाली चीज़ें हैं उनको बढ़ाएं और खुद चलें, आंतें चलाएं।
1: धन्यवाद कॉल करने के लिए। और सरोज मल्होत्रा लिख रही हैं मेरठ से, लिवर खराब होने के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या कैसे खुद को सर पता चले।
0: देखिए, बीमारी में अगर सिम्टम्स आ गए, लक्षण आ गए, तो आपका बहुत लेट हो गया। अगर हमें लिवर के बारे में ये समझना है कि सिम्टम्स आने के बाद मैं पता करूं, मतलब गाड़ी टक्कर मारने के हो जाने के बाद देखें कौन मरा कौन बचा, कितनी चोट लगी, वो ठीक नहीं है। नॉर्मली लिवर आवाज़ नहीं करता, साइलेंट वर्कर है, और आपको अंडरग्राउंड पूरा फर्स्ट क्लास उसका एक मैकेनिज्म है, हर सेल जो है उसका इतना काम करता है। पर सिम्टम्स क्या होते हैं? आप कहते हैं कि सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, वो कहते हैं अमीबाइसिस की दवाई खा लो, ये खा लो। पेट में दर्द होना, थकान ज़्यादा होना, भूख का कम होना, और कई लोगों को एसिडिटी जो है वो भी लिवर के, क्योंकि लिवर आपका सूज गया है, उसके कारण हो सकती है। तो मैं कहूँगा सबसे कॉमन सिम्टम जो है लिवर का आज की तारीख में, भूख नहीं लगना, डिस्पेप्सिया होना है। दूसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत पुराना है, जैसे शराब पीने वाला है, वो कहता है जी मैं तो पीता हूँ मुझे कुछ नहीं होता, पर जब उसके लिवर के टेस्ट कराएं तो एंजाइम्स लिवर के हाई हैं, या लिवर का अल्ट्रासाउंड ठीक नहीं है, या आँखों में थोड़ा सा पीलापन आ गया, पैर में सोजिश आ गई, ये एडवांस डिजीज की लक्षण है। वेट ना करें, आज ही चेक कराएं और अपना लिवर हेल्दी रखें।
1: और हमारे एक और कॉलर हमारे साथ हैं इस बीच में। हेलो
3: हेलो हेलो मैम।
1: जी
3: हाँ सर, मुझे सर से पूछना है कि लिवर फंक्शन टेस्ट कहाँ की जाती है सर।
0: लिवर फंक्शन टेस्ट जो हैं, तीन चीज़ें बताते हैं। पहला तो ये बताते हैं कि लिवर के अंदर कोई इंजरी तो नहीं है, मतलब जैसे चोट लगे और आवाज़ हो, तो वो SGOT SGPT बताते हैं कि ये लिवर के एंजाइम्स 30 या 40 से ज़्यादा हैं तो लिवर में इंजरी। दूसरा, एक लिवर का टेस्ट जो फंक्शन टेस्ट है वो एल्ब्यूमिन के नाम से होता है, ALUBMIN। एल्ब्यूमिन जो है वो बताता है कि लिवर की एनर्जी कितनी है, मतलब कितना लिवर घोड़े की तरह है या नहीं है। अगर एल्ब्यूमिन 4, 4.5 है, लिवर अच्छा है। तीसरा टेस्ट है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALP। अगर आपने कोई दवाई खाई जिससे आपके लिवर को इंजरी हुई, तो ALP हाई होता है। पर आप उस लेवल तक ना जाएं, सिंपल भाषा में याद रखें, लिवर हेल्दी रखें। अगर तकलीफ हो तो लिवर फंक्शन टेस्ट करा के डॉक्टर को दिखा लें।
1: जी हमारे पास इतने कॉल्स और इतने मैसेजेस हैं कि हमें समय नहीं है कि हम म्यूजिकल ब्रेक भी ले सकें, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने कहा पानी भी पी

0: रहना है और मनोरंजन भी करते रहना है सर, हैप्पी रहने के लिए,
1: बिल्कुल
0: स्ट्रेस फ्री रहने के लिए गाना भी सुनना जरूरी होता है, और हमारे इस कार्यक्रम में हम गाने बजाते हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमें जैसे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप हैं रेडियो डॉक्टर में और रेडियो डॉक्टर में समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर शिव सरीन हमारे साथ हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप मौका चूकें, आप फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं वैसे, और हम एक एक करके कोशिश करेंगे कितने लोगों को शामिल कर सकें। मैसेजेस बहुत आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, रविंद्र पाठक, आशा पाठक नीदरलैंड से हमें सुन रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। थैंक यू शालिनी मैम एंड डॉक्टर सर फॉर सच ए नाइस प्रोग्राम। वर्ल्ड लिवर डे पर बहुत ही सराहनीय जानकारी मिल रही है, वेरी एक्सलेंट प्रोग्राम। हमारे क्वेश्चन है कि कभी कभी जॉब पर हमें फ्राइड खाना पड़ जाता है मजबूरी वश, क्या ये भी अवॉइड करना चाहिए या कभी कभी खाया जा सकता है?
2: देखिए, सवाल के जवाब से पहले आपने इतना बढ़िया गाना बजाया जिसमें दिल और जिगर जी दोनों चीजें आपने
1: सर मैंने चूज किया था,
2: चूज किया, थैंक यू, क्योंकि दोनों का बहुत रिश्ता है। पर मैं ऐसे गाने चाहूंगा जिसमें जिगर पहले हो, दिल बाद में हो।
1: तो ये रिश्ता भी आप जरूर बताइए।
2: हाँ, ये रिश्ता जरूर बताऊंगा मैं आपको, और मेरे नीदरलैंड के दोस्तों को कहूंगा कि हाँ, आप अगर जरूर फ्राइड खाएं, पर वहां तो बहुत पहाड़ियां हैं, फिर उन पे चढ़ के आ जाएं। नीदरलैंड इज फेमस फॉर द स्नो एंड द माउंटेन्स। कभी कभी खाना पड़ जाए तो ठीक है, इट इज नॉट चीटिंग, इट इज कंपल्शन। बट याद रखिए कि अगर आज आपने फ्राइड खाया, ओवर ईट किया ज्यादा, तो अगले दिन फाका मारें, बराबर ठीक हो जाएगा
1: जी। और ये जो सर दिल और जिगर आप बोल रहे थे, जिगर पहले होना चाहिए फिर दिल होना चाहिए,
2: क्योंकि जिगर जो है वो बिफोर क्राइस्ट 2000 साल पहले मंदिर में भगवान की फोटोज नहीं होती थी, लिवर रखा जाता था।
1: अच्छा,
2: बेबीलोनियन टाइम्स के अंदर क्राइस्ट से 2000 साल पहले पूजा होती थी लिवर की, और लिवर के अंदर देखा जाता था कि कावर्ड है या अच्छा लिवर है। कावर्ड लिवर था, जिसे लिली लिवर कहते हैं, वो फैटी लिवर होता है। तो अगर फैटी लिवर है तो यू आर ए कावर्ड लिवर, मतलब गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और उस समय राजा महाराजा सारे अपनी सेना कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी लिवर के स्ट्रक्चर, लिवर के ऊपर। अच्छा। तो जो हम आज हेरियोस्कोपी है, उस समय हेरियोस्कोपी कहा जाता था, हिपेटोस्कोपी, वो आज हॉरोस्कोप में बदल गया। हॉरोस्कोप इज अ फॉर्म, लिवर यूज टू बी द मेन ऑर्गन विच

0: used to decide destinies of the provinces, of the kingdoms, and of course human beings. तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीदरलैंड्स वाले जरूर पहाड़ी चढ़े, फ्राइड अवॉइड करें
1: जी जी. तो हार्ट और लिवर का भी बहुत गहरा संबंध है, ये भी डॉक्टर साहब ने बताया. हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं. हेलो.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी, कस्बा किठौर जिला मेरठ से बोल रहे हैं जी. सलाउद्दीन
1: जी. जी सलाउद्दीन जी, बताइए क्या पूछना है.
2: सर, ये पीलिया जो हो जाता है, इसमें जैसे बताते हैं कि भाई गन्ना खाओ या सिरका खाओ, मूली का डलावा, इसके बारे में जानकारी लेनी थी जी, क्या ये सही है, इसमें बताएं डॉक्टर साहब.
0: जी साहब, वालेकुम सलाम. आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा है. जॉन्डिस में आप मूली खा सकते हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ है. आंवला ले सकते हैं और ऐसी चीज़ें जो कि शुगर वाली नहीं हो. पर गन्ना लेने से फ़ायदा नहीं है, गन्ना प्योर शुगर है. पहले ज़माने में यह होता था कि अभी मरीज़ को उल्टी हो रही है, कैलोरीज नहीं है, पीलिया है, उसमें शुगर गन्ने के माध्यम से दे देते थे. पर आज की तारीख में मैं कहूँगा गन्ना लेना पीलिया के लिए ठीक नहीं. पीलिया के तीन कारण ज़्यादातर होते हैं, या लीवर के अंदर खराबी हो, जैसे शराब से हो गया, मोटापे से हो गया, या आपका कैंसर हो गया लीवर में. दूसरा कि पित्त का रास्ता रुक जाए, जैसे पथरी हो गई गॉल ब्लैडर के अंदर, पैंक्रियाज में. और तीसरा है खून की कमी से. तो आपका कौन सा पीलिया है उसका जानकारी जरूरी, पर गन्ना लेना पीलिया के लिए फायदेमंद नहीं.
1: जी. और ये मैसेज हमें किया है अर्चन वर्मा जी ने जम्मू से. सर नमस्ते भेज रहे हैं आपको और साथ ही साथ धन्यवाद दे रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और ये मैसेज वीरेंद्र कुमार वर्मा जी का है. इन्होंने लिखा है फाइबर स्कैन टेस्ट क्या होता है.
0: या फाइब्रो स्कैन जो है एक तरह का अल्ट्रासाउंड है, लो फ्रीक्वेंसी का. मशीन बड़ी महंगी है, 1 करोड़ के करीब की है, इसलिए महंगी होती. पर हाँ, अगर आपको लगे जरा सा भी डाउट तो फाइब्रो स्कैन कराएं. उसके अंदर दो चीज़ें पता सकती हैं कि लीवर में चर्बी कितनी है, फैट कितनी है, कितने परसेंटेज फैट है, और लीवर हार्ड हो गया है कि नहीं. अगर फाइब्रोस्कैन में लीवर स्टिफनेस 8 से ऊपर आए, नॉर्मली 6 से कम होती है, 8 से ऊपर, 8 किलो पास्कल से ऊपर है तो स्टेज 2 फाइब्रोसिस है, और 12 या 14 के ऊपर आ जाए तो सिरोसिस है. 1 मिनट में ये टेस्ट होता है, ज़रूर करा लें जिंदगी भर. क्योंकि लीवर हार्ड है, हार्ट भी हार्ड होगा, किडनी भी हार्ड होगी, लंग भी हार्ड होगा. तो एक सिंपल टेस्ट, 2 मिनट के टेस्ट से बाकी ऑर्गन्स की हार्डनेस, फंक्शनिंग, लॉन्गेविटी पता लग जाती है.
1: तो ये प्रिकॉशनरी कराया जा
0: बिल्कुल
1: सकता है,
0: बिल्कुल कराना चाहिए
1: जी. अभिषेक भटनागर जी हमें लिख रहे हैं, स्टूडेंट हैं, बर्लिन में पढ़ते हैं. इन्होंने लिखा है कि इट्स एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम ऑन वर्ल्ड लिवर डे. आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सपर्ट. विद टुडेज फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल एंड इंक्रीजिंग केसेस ऑफ फैटी लिवर इवन अमंग यंग पीपल, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली हैबिट्स वी शुड अडॉप्ट टू प्रोटेक्ट आवर लिवर इन द लॉन्ग रन. और आज हम उसी पे ज्यादा स्ट्रांग लिवर पे बात.
0: अभिषेक, बर्लिन बहुत बढ़िया जगह है. सबसे ज्यादा लोग दुनिया में बर्लिन फ्राइबर्ग में साइकिल चलाते हैं, दौड़ते हैं. साइकिल चलाते रहिए, हल्के शरीर को रखिए, स्लिम एंड फिट रहिए. दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी तेज चल रही है, आपको उससे तेज हेल्थ को रखना. अगर आपकी गाड़ी कमजोर होगी तो कैसे चलोगे भाई. तो इसलिए मेक योर कार, मेक योर इंजन स्ट्रॉन्गर एंड यू गेट द बेस्ट BMWs फ्रॉम जर्मनी. मेक योर BMW योर ओन बॉडी मशीन विच इज वर्किंग.
1: बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वहां से हमें सुन रहे हैं अभिषेक जी. और बहुत सारे मैसेजेस हैं जो हमें तारीफी तौर पर आ रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और समय रहेगा तो मैं नाम ले पाऊंगी, लेकिन शायद नहीं ले पाऊंगी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं. डॉक्टर साहब, एक ये प्रश्न आया है रश्मि जी का. इन्होंने लिखा है कि वेरी इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, स्पेशली अबाउट डिफरेंट टेस्ट फॉर लिवर. बहुत अच्छी तरह से आपने बताया डॉक्टर साहब. एक क्वेश्चन है इनका कि क्या ये टेस्ट नॉर्मल पैथ लैब्स में जाकर कराए जा सकते हैं या इसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लगती है.
0: बिल्कुल जरूरत नहीं है. रूटीन हेल्थ चेकअप में लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं. अल्ट्रासाउंड के लिए रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, फाइब्रो स्कैन कराना है तो लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाना है. पर शुरुआत करें ब्लड टेस्ट में, प्लेटलेट्स और बाकी लिवर फंक्शन टेस्ट करें, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को ध्यान से रखिएगा, बढ़ने नहीं दीजिएगा. नॉर्मल की अपर लिमिट पर कभी मत जाइए, नॉर्मल की लोअर लिमिट पर लेकर आइए.
1: जी, हमारे एक कॉलर इस बीच जुड़ गए हैं. हेलो.
3: हेलो जी, मैम नमस्कार.
1: जी, देवेंद्र जी बोल रहे हैं.
3: हाँ
1: जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: जी, मैं कार्बी अंगलोंग असम से बात कर
1: रहा हूँ. असम से बात कर रहे हैं. असम से हमारे पास मैसेजेस भी बहुत आए हैं. जी पूछिए, क्या पूछना है आपको?
3: जी डॉक्टर साहब से मेरा 2 सवाल था.
1: जी पूछिए.
3: क्या ज्यादा पेन किलर या बिना डॉक्टर की सलाह से ली गई मेडिसिन लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है?
0: बिल्कुल पहुंचा सकती है जी.
1: दूसरा
3: सवाल है, कौन

0: ऐसे फूड आइटम्स है जो लीवर को डिटॉक्स करने में हमारी मदद करते हैं?
1: देखिए, आप बिना डायरेक्शन के अगर चलेंगे तो आसाम जाने की जगह आप बिहार पहुंच सकते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेंगे तो रास्ता भी गलत हो सकता है और रास्ते में टक्कर भी हो सकती है। ध्यान रखिए, दवाइयाँ लेनी बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने एक पुस्तक लिखी है, ओन योर बॉडी, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। उसमें चार लाइफ लाइन दी हैं। पहली लाइफ लाइन है जिससे ज़िंदा आदमी अच्छे से रहे, फिट एंड स्लिम। दूसरी है व्हेन, हाउ मच, व्हेन, व्हाट एंड टू बी ईटन, तो अगर खाना कैसा। तीसरा उसका जो है वो है स्लीप। और चौथी लाइफ लाइन है वो है दवाइयाँ। तो पहली तीन

0: चार लाइफ लाइन दी हैं। पहली लाइफ लाइन है जिससे जिंदा आदमी अच्छे से रहे, फिट एंड स्लिम। दूसरी है व्हेन, हाउ मच, व्हेन, व्हाट एंड टू बी ईटन, तो अगर खाना कैसा। तीसरा उसका जो है वो है स्लीप। और चौथी लाइफ लाइन है वो है दवाइयाँ। तो पहली तीन लाइफ लाइन्स अगर आप ठीक रखेंगे, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दवाइयाँ लीवर को इंजर करती हैं, हर दवाई लीवर के अंदर जाती है। मेरी सलाह है कि बिना दवाई के ही ठीक रहें। थोड़ा बुखार, थोड़ा लूज मोशन, हर एक में एंटीबायोटिक, पेन किलर ना लें। हाँ, बहुत ज़रूरी हो तो डॉक्टर से सलाह लें। दूसरा, आपने कहा कि लीवर के लिए कौन सा फूड अच्छा है, मैं पहले बता चुका हूँ, SMEs फूड बहुत अच्छा है, पर सीजनल फूड खाइए और ओरिजिनल फूड खाइए।
1: जी, और बहुत बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने कहा सेल्फ मेडिकेशन बहुत आम है भारतवर्ष में, और वैसे तो शायद दुनिया भर में होगा, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो ज़रा सा भी कुछ होता है तो लोग चले जाते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, या उन्हें लगता है पिछली बार ये दी गई थी तो वही पुराना पर्चा निकाल लेते हैं और उसी को दे देते हैं, और कई बार तो वो खुद जो लिया है वही बच्चों को भी दे देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कितनी हार्मफुल हो सकती है लिवर के लिए?
0: देखिए, मेरा इसमें क्लियर थिंकिंग है कि जैसे आप नई गाड़ी खरीदते हैं उसकी 5 या 10 साल की वारंटी होती है, अगर आप पैदा हुए हैं तो 40 साल तक तो वारंटी में ही रहते हैं। 40 साल तक दवाई खानी नहीं, उसके बाद में खानी है जब ज़रूरत हो आपको। पर अगर आप अपनी पूरी सर्विस बराबर गाड़ी की कराते रहेंगे, मतलब हेल्थ को चेकअप कराते रहेंगे, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवर द काउंटर या अपनी मर्जी से दवाई खाना बिल्कुल ठीक नहीं, उसकी जगह अच्छा खाना खाएं। दवाई खाना आसान है क्योंकि एक छोटी सी गोली है, पर वो आदत पड़ जाती है। सारा सिर दर्द हो, गोली खा लो। आई वुड से सिर दर्द हो रहा है तो रेस्ट कर लो, गोली ना खाओ।
1: जी, बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए हैं जिसमें लोग बहुत बड़े बड़े हमें क्वेश्चंस लिखकर भेज रहे हैं, पूरे अपनी रिपोर्ट्स भी भेज रहे हैं कुछ लोग, और सिम्टम्स बहुत सारे लिखकर भेज रहे हैं, तो मेरे पास इतना समय नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपका मैसेज नहीं ले पा रही हूँ, मैं शॉर्ट में ले रही हूँ। इन्होंने भी काफ़ी लंबा लिखा है, मीरा सिंह सिलचर आसाम से, कि अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए लिवर में प्रॉब्लम होती है क्या?
0: लिवर के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लिवर में अगर फैट है तो कोलेस्ट्रॉल हाई होगा। याद रखिए, महिला के लिए, भारतीय महिला के लिए LDL जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, पहले इसका लेवल 100 तक होता था, अब मैं कहूँगा कि 50 तक लाएं। टोटल कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक और कंपाउंड है LDL, उसका ध्यान रखें। अगर हाई है उसको डाइट से, एक्सरसाइज से कम करें, नहीं है तो ज़रूर दवाई लें।
1: और एक हमारे कॉलर हमारे साथ हैं, हेलो।
2: गुड आफ्टरनून शालिनी मैडम जी।
1: जी गुड आफ्टरनून, जी बताएं।
2: गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब जी।
0: नमस्ते जी।
1: जी अपना नाम बता के प्रश्न करें, समय कम है हमारे पास।
2: मैं अरविंदर कांत कॉल कर रहा हूँ मैडम जी।
1: जी जी जल्दी से पूछ लीजिए
2: डॉक्टर साहब जी। मैंने 2 साल स्पाइन टीवी की दवाई खाई थी, इसका कोई लिवर पे असर पड़ेगा? इसके लिए व्हाट कैन आई डू फॉर दिस, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए?
0: स्पाइन टीवी ठीक हो गई आपकी तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा मुश्किल होती है उसका अगर असर होना आता है तो, जब दवाई लेते हैं तभी होता है। दवाई ले ली, आप ठीक हो गए, अब भूल जाइए, आगे टीबी ना हो इसके लिए ध्यान रखें और लीवर को बचाए रखें।
1: डॉक्टर साहब बहुत सारे प्रश्न अभी दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि घड़ी मेरे सामने है और इतनी तेजी से भाग रही है, इधर मैसेजेस उधर कॉल्स, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें आज छूट जाएंगी, तो आपको ये प्रॉमिस करके जाना है कि आप पुनः यहाँ आएंगे हमारे श्रोताओं के और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते रहेंगे। ये बताइए मुझे कि क्या बच्चों को भी लिवर प्रॉब्लम्स होती हैं? क्योंकि बड़ों में तो बहुत आ रहे हैं मेरे पास मैसेज कि हमें फैटी लिवर है, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है।
0: देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर माता पिता का हेल्थ ज़्यादा अच्छी है, मोटापा है, तो बच्चे में ज़रूर होंगे और वो दुख भोगना शुरू कर देता है पहले महीने से। अगर आपने बच्चे को ज़्यादा रात को दूध पिलाया वो ठीक नहीं है, उसको भूखा रहना पहले महीने से शुरू कराना। 3 साल तक शुगर नहीं देनी है बच्चे को, कम से कम शुगर देनी है, उससे लिवर में फैट होती है। अगर बच्चे को आप 1 साल के 6 महीने के बच्चे को 2 बार फ्रूट जूस कैंड देंगे, 1 साल की उम्र तक फैटी लिवर हो सकता है। अगर आप 6 महीने के बच्चे को 2 बार फ्रूट जूस देंगे जो टिंट जूस है, तो 1 साल के अंदर उसको फैटी लिवर डेवलप हो सकता है। तो याद रखें, बचपन से बच्चे को खराब करना या अच्छा करना माँ बाप का जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। बच्चे को थोड़ी पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसको जो दे दिया वो ले लिया। दूसरा, फैटी लिवर बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है। मैं कहूँगा कि 15 साल के कम बच्चों के अंदर लगभग 15-20% में फैटी लिवर है, 18 साल के अंदर होते होते, और ये भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ना बच्चे दौड़ते हैं, ना उन्हें दौड़ने दिया जाता है, PT का टाइम होता है, माफ़ी मांग लेते हैं। और खाना जो वो खाते हैं

0: वो सोचते हैं टीवी की तरफ देख रहे हैं, खाना मुंह में जा रहा है, बंद करें। 1 घंटा माता पिता को चाहिए बच्चों को अपने लिए रखना है, उनकी हेल्थ के लिए। एंड दी पेरेंट्स मस्ट लीड बाय एग्जाम्पल। अगर माँ बाप दौड़ेंगे बच्चा भी दौड़ेगा, वो बैठे रहेंगे बच्चा भी बैठा
1: जी, तो बहुत कुछ हमें बाय एग्जाम्पल बच्चों को सिखाना
0: और
1: है।
0: अगर बच्चा मोटा है, 10 साल का है और ओबीज है, तो उसका हार्ट 40 साल के व्यक्ति के बराबर हो जाता है।
1: अच्छा
0: याद रखें कि अगर बच्चा मोटा है, ओबीज है, तो उसके हार्ट ने इतना काम कर लिया जितना कि एक नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति का हार्ट 40 साल का होगा, तब उतना इतना काम किया। आप चाहते हैं कि आपके बच्चा 10 के बाद 30-35 साल में इधर उधर हो जाए? बिल्कुल नहीं चाहते। याद रखिएगा इसको, ये बहुत लॉन्ग स्टडीज है। तो इसलिए बच्चों को पतला रखना आपकी जिम्मेदारी है। हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन देयर एजुकेशन।
1: ओके, तो हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट, और इसीलिए हम लेकर आते हैं रेडियो डॉक्टर, और इसीलिए ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इसको रोज सुने। डॉक्टर साहब ने आज कह दिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे मैसेजेस तो हैं हमारे पास, लेकिन मैं अभी आपसे ये भी नहीं पूछ पाई हूँ कि कौन कौन सी लिवर की बीमारियां होती हैं, ये तो गिना दीजिए कम से कम।
0: देखिए, लिवर में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा नुकसान देती हैं। एक
1: जी
0: मोटापा या फैट, दूसरा अल्कोहल, वो तो सबको पता है,
1: जी
0: और तीसरा वायरसेस।
1: ओके
0: वायरसेस में हेपेटाइटिस बी और सी वायरसेस हैं। दोनों क्रॉनिक होते हैं, मतलब क्रॉनिक का कि बॉडी अपने आप उनको क्लियर नहीं कर सकती। हेपेटाइटिस सी की दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, अगर 3 महीने से 6 महीने तक दवाई ले आदमी तो हेपेटाइटिस सी क्लियर हो जाता है। पर अगर सिरोसिस हो गया है तो उसको हमेशा फॉलो अप करना है। हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, सस्ती दवाइयाँ हैं, सब नेशनल प्रोग्राम में। अल्कोहल जो है ना, वो बड़ा मुश्किल है। अगर किसी के लिवर में फैट है और उसने अल्कोहल लिया तो करेला और नीम चढ़ा, डबल नुकसान होता है। तो
1: जी
0: अल्कोहल को परहेज रखें, दोस्तों को बिल्कुल नहीं पूछें, दुश्मनों को भी दूर रखें।
1: जी
0: तीसरा है मोटापा या फैट, जिसके बारे में कहा। फिर लिवर में कैंसर का होना बहुत तेजी। आज अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंसर जो है उसमें लिवर कैंसर है,
1: अच्छा
0: और भारत में जो 3 कॉमन कॉज ऑफ डेथ हैं उसमें लिवर कैंसर है। पर अगर आपको कैंसर से बचना है तो लिवर में इन्फ्लेमेशन नहीं होनी चाहिए। तो वन मैसेज क्लियरली इज कि ALT या SGPT नॉर्मल रखें, 30 से कम, आदमी में, महिला में 19 से कम रखें। अगर आपका SGPT कम है, लिवर में सोजिश नहीं है, लिवर में फैट नहीं है, आपको कैंसर का रिस्क, कहीं के भी कैंसर का रिस्क कम हो
1: तो
0: जाता
1: क्या
0: है।
1: महिलाओं में लिवर वीक होता है क्या, पुरुष
0: नहीं,
1: लोगों में?
0: महिलाओं की अपर लिमिट 19 है।
1: अच्छा
0: हालांकि
1: हाँ,
0: भारत की सब लैब्स 40 रखती हैं, पर मैं कहूंगा 19 से ज्यादा SGPT ना
1: ये
0: रखें,
1: अलग अलग क्यों है पुरुषों महिलाओं में?
0: क्योंकि महिलाओं का बॉडी एरिया कम होता है,
1: अच्छा
0: उनका वॉल्यूम, बॉडी का फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन सब कम होता है,
1: ओके
0: मेटाबॉलिज्म बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए उनके लिए ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN की गाइडलाइंस हैं US की, 19 फॉर फीमेल्स, 30 फॉर मेल्स इज द अपर लिमिट। अगर इससे ऊपर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या मैं इसका इम्पॉर्टेंस, अगर एक 25 साल का लड़का है और
1: जी
0: उसका SGPT 80 है, उसको 10 साल में, 36 साल तक होएगा, हार्ट अटैक का रिस्क डबल हो जाएगा। तो अगर आपको अपने लड़के लड़की की शादी करनी है तो याद रखिएगा कि जन्म पत्री से ज़्यादा आप SGPT का टेस्ट करा ले, 30-40 रुपए में पैसा भी बचेगा, और उसके साथ ये मालूम पड़ जाएगा अगर SGPT 80 है, ही इज़ नॉट ए फिट गाय, उसको पहले फिट करना है।
1: और आजकल वैसे थोड़ा थोड़ा सा अवेयरनेस आई है लोगों की, क्योंकि वो ब्लड रिलेटेड डिजीजेस के बारे में जब
0: बिल्कुल
1: बात कर
0: ठीक
1: रहे
0: कह
1: हैं,
0: रहे हैं,
1: थैलेसीमिया
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: सारी चीज़ों पे, तो थोड़ा थोड़ा सा लोग अलर्ट अवेयर हुए हैं। हम भी कोशिश करते हैं, पर जैसे जीन पत्री जैसी कोई भी चीज़ आती है, जीन टेस्ट करके आता है, तो वो कितना आपको लगता है कराना चाहिए शादी से पहले?
0: जीन पत्री बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से जन्म पत्री से ज़्यादा ज़रूरी जीन
1: जीन
0: पत्री है
1: पत्री है।
0: कि आपको विरासत में क्या मिला माता पिता से, कि साहब शुगर मिली, BP मिला, हार्ट डिजीज मिली, मेरी वाइफ को क्या मिला, इस तरह से दोनों का मिलकर ही तो बच्चा पैदा होगा। तो जिसके खानदान में ये सारी बीमारियां हैं, शादी ज़रूर करें, पर ध्यान रखें कि यार हम लोग थोड़े डिफेक्टिव पीस बन गए।
1: जी, लेकिन डिफेक्टिव पीस अगर बने हैं तो ठीक हो सकता है ना
0: बिल्कुल हो
1: सर?
0: सकता है,
1: हाँ, तो हमें
0: बिल्कुल।
1: ठीक करना है, और आज ये इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुंच रही है, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूं, इस कार्यक्रम को बहुत शीघ्र आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन पाएंगे, उसे आप पुनः सुनिएगा, और जो चीज़ें अभी आप नहीं एक बार में ग्रेस्प कर पाए हैं आप उस कार्यक्रम में दोबारा सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो छूट रही है, और वो जैसे लिवर कैंसर की आपने बात की, लिवर ट्रांसप्लांट आजकल बहुत सुनने में आ रहा है, ये क्यों?

0: हो रहा है और आप उसके स्पेशलिस्ट हैं, आपके इंस्टीट्यूट में किया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: देखिए, लिवर अगर उस स्टेज तक चला जाए कि उसका रीजेनरेशन नहीं हो सकता. एक तो लिवर की एक ऐसी कैपेसिटी है, जैसे बाल कटाए, चार चार हफ्ते के अंदर वापस नए आते हैं, तो लिवर भी अगर डैमेज होता है तो जनरली 4 हफ्ते में वापस रिपेयर हो जाता है. पर अगर रिपेयर नहीं हो पा रहा, शराब पीता ही गया बंदा, मोटा होता ही गया, खाता ही गया, तो ज़रूर उसका लिवर बैठ जाता है. ऐसे लिवर को जिसमें पीलिया हो जाए, पेट में पानी बन जाए, कैंसर हो जाए, ब्लड वॉमिटिंग हो जाए, बेहोशी आती रहे बार बार, इन लोगों को नया लिवर चाहिए होता है. ऐसे लोगों के लिए घर के रिश्तेदार नॉर्मली 90% उन्हीं का ट्रांसप्लांट भी देना होता है. वाइफ्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लड़के देते नहीं हैं, लड़कियाँ ही देती हैं. और हाँ, डिजीज डोनर जो कि किसी की मृत्यु हो गई है वो अपना लिवर दे, ऐसा बहुत कम है. तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सब लोगों से कि मरने के बाद ऑर्गन डोनेशन नहीं होता, मरने से पहले ही कर दें. आपका अगर जीन्स, आपका डीएनए आप चाहते हैं जिंदगी भर चलता रहे, तो आपका लिवर, आपकी किडनी किसी में लग गई, उसके पूरा खानदान में आपका डीएनए चलता रहेगा. तो आज ये 19 अप्रैल को ये भी शपथ लें कि मैं ऑर्गन डोनेट करूंगा जिससे और लोगों की जिंदगी बचे. लिवर ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है. हम लोगों के यहाँ भारत में करीब 5,000 एक साल में होते हैं, ज़रूरत है 2 लाख की. इमेजिन करिए कितने लोग मर जाते हैं बिना ट्रांसप्लांट के. आपके लिवर डोनेट करने से बहुत से लोग बच जाएंगे.
0: और ये लाइव भी डोनेट किया जा
1: बिल्कुल
0: सकता
1: लाइव ही होता है नॉर्मली. और लिवर का आप 60 पैसा दे दें, 60%, तो आपका लिवर भी ग्रो कर जाएगा,
0: जी
1: जिसको मिलेगा उसकी जिंदगी बच जाएगी.
0: जी और आई थिंक डॉक्टर साहब यही एक ऑर्गन है जो रीग्रो कर सकता है।
1: बाल भी करते हैं और लिवर भी करता है. आपने
0: जी
1: लिवर दिया, 4 हफ्ते में नया तैयार
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: है.
0: डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि आज का कार्यक्रम पसंद आ रहा है, उन्हें आपकी आवाज़ बहुत पसंद आ रही है, तो ऑडियो फ्रेंडली आप हैं। उन्होंने लिखा है, ये श्याम मित्तल जी लिख रहे हैं रोहिणी से, कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, और बधाई कि आप यहाँ आए हैं, धन्यवाद आपको कि आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एक उनकी समस्या भी इन्होंने की है पर मेंशन पर मेरे पास समय अब नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रह गए हैं, पर धन्यवाद श्याम जी कि आपने प्रश्न किया। एक प्रश्न जो बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है युवा साथियों को मुझे बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं वो समय चुरा रही हूँ थोड़ा सा आप लोगों के बीच में से, कि आप एक इंस्टीट्यूट है, ये जो ILBS इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूट जो लोगों को सिखाता है, पढ़ाता है, आप उसके चांसलर हैं, मुझे ये बताइए कि सर उसमें कैसे लोग एडमिट हो सकते हैं अगर वो चाहते हैं वहाँ से कुछ सीखना।
1: ये दिल्ली सरकार ने ये ILBS बनाया, मैं उसमें काम करता हूँ. उसमें 3 चीज़ें मेन हैं. एक ट्रेनिंग या स्किल्स है जिसमें हम लोग लड़कों को, स्टूडेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर के डिजीज़ के बारे में पढ़ाते हैं. अगर दूसरा है अस्पताल, और तीसरा रिसर्च. मैं सोचता हूँ रिसर्च भी ठीक ठीक हो जाती है क्योंकि रिसर्च इज़ ए रिलीजन देयर. अब मरीज़ को भर्ती होने के लिए, अगर उसको बीमार है, हम साल में करीब 1,50,000, 60,000 से ज़्यादा मरीज़ लिवर के देखते हैं, करीब 11,000 इमरजेंसी. हर आदमी को वहाँ पे कोशिश की जाती है कि वो ठीक रहे, और हाँ, ज़्यादा बीमार हो तो भर्ती कर लिया जाए. और पूरा उसकी वेबसाइट है, आप ऑनलाइन उसके अंदर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. कई बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, कोशिश करते हैं अगली बार अच्छा करें.
0: तो बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर हम दे चुके हैं लेकिन बहुत सारी अभी बाकी हैं, और सभी को धन्यवाद देना और माफ़ी भी मांग रही हूँ मैं क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता हमें लिख चुके हैं, फ़ोन लाइन पर भी थे पर हम सबको शामिल नहीं कर पाए। धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को सुना और शायद आप में कुछ बदलाव आए और हमारा ये कार्यक्रम सफल हो जाए। धन्यवाद तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब को जाता है जो समय निकाल कर आए हैं। हमारे साथ रहे प्रोफेसर डॉक्टर शिव सरीन, आप जाने माने लिवर स्पेशलिस्ट हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज न्यू दिल्ली के फाउंडर, डायरेक्टर और चांसलर हैं। आपको धन्यवाद कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज दी है। चलते चलते शॉर्ट में कुछ कहेंगे, आज कोई मैसेज रहेगा आपका? थैंक
1: शालिनी, यू आर यूनिक.
0: यू सर, थैंक यू सो मच, दैट्स अ
1: आपने इतना इतना बढ़िया प्रोग्राम
0: कॉम्प्लीमेंट।
1: किया, मुझे बुलाया, और मैं चाहूंगा कि हर महीने की 19 को भूलिएगा नहीं. आपका लिवर आपका सबसे सुंदर, सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रांग फ्रेंड रहेगा. स्ट्रांग हैबिट्स रखिएगा, एक दिन की हैबिट नहीं, स्ट्रांग हैबिट्स, स्ट्रांग लिवर, स्ट्रांग बॉडी एंड शतायु भवे.
0: थैंक यू सो मच, तो धन्यवाद हमें मैसेज करने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर, स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: थैंक यू शालिनी, थैंक यू ऑल.
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: जी मैम,
1: जी, तो गीत कैसा सुनना चाहोगे फिर आज इस सफर?
0: आज मैं गीत सुनना चाहूंगा जी। अप्रैल फूल मूवी है,
1: जी
0: उन्हें बड़ा प्यारा गीत है जी। तुझे
1: जी
0: प्यार करते हैं करते रहेंगे,
1: अच्छा जी,
0: दिल मन के दिल में धड़कते रहेंगे।
1: वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। किसी लिए गाना वैसे डेडिकेट कर रहे हो?
0: अपनी वाइफ नू मैं सुनाऊंगा जी। जी
1: अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी, ठीक है, बहुत चंगा लगा
0: जी
1: जी थोड़े नाल गलबात करके, थोड़ी कहानी सुन के जी।
0: जी थैंक यू मैम, शुक्रिया जी,
1: थैंक
0: शुक्रिया।
1: यू जी, शुक्रिया जी कॉल करने वास्ते। लो जी, देखा कितना अच्छी कहानी उन्होंने सुनाई, मतलब उन्होंने अपने नानके की गल की थी, तो मैंने भी नानके याद आ गया, मैंने भी वो मामे मासियाँ याद आ गई जो साढ़े हाँ आते होंगे से। अजकल तो मैंने लगता नहीं कि शायद होंगे, पर उदो पहला समय से शायद होंगे से इदा। सो ये सफ़र जो चलता रहेगा, क्योंकि समा साढ़े को हाले बहुत है जी। मैं होर कहानियाँ सुनना चाहती हाँ, मैं चाहती हूँ कि सारे मैंने अपनी यादा ताज़िया कर। देखो अपनी यादा ही ताज़िया कर लो, बचपन की कर लो, जवानी की कर लो, कोई भी याद ताज़ी कर लो। वो भी सफ़र तुम दस सकते हो जिस सफ़र से तुम हो, कोई सुपना तुम पूरा कर रहे हो उस सफ़र से तुम चले हुए, वो भी तुम साझा कर सकते हो। ताड़ी दोस्त अर्जी सुर भी इंतजार कर रही है जी। लो इस गीत तो बाद मुड़ के आँदी हाँ, उम्मीद करती हाँ कि कोई वधिया जी कहानी जरूर सुनाँगी।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत।
0: जी कोई कहानी किस्सा शेयर करना चाहोगे अपनी जिंदगी दा सफर दा?
1: मैं पहला पहला मुझे शौक सी जिदा भी कुछ लिखण का।
0: हाँ जी
1: मैं पहला उदे शेर दे लिखा रहा जिदा
0: जी
1: आम ही होंगे, हौली हौली मेरा सफर बधी गया बधी गया। फिर मैं अपने उस्ताद नूं तारक कीता, गुरु
0: जी
1: पात्र साहब उन्होंने नाल मैनूं काफी कवी रवा कीते वड्डे वड्डे शहरां नाल।
0: अच्छा
1: ते फिर मैं एक किताब लिखी, फिर दो लिखी, तीन लिखी, चार पांच किताबां लिखियां।
0: अच्छा क्या बात है।
1: हाँ जी, हाँ
0: ते हुन मतलब किन्ने टोटल लिख चुके हो?
1: जी, मैं पांच किताबां लिखियां जी। हुण मैं किताब मेरी होर तैयार है। वैसे मैं
0: अच्छा
1: लॉकडाउन में बहुत ज्यादा लिखिया। हाँ
0: जी बहुत वधिया गल है। कुछ 2 17 सुना सकते हो किसी कविता अपनी कविता
1: जी,
0: दिया?
1: हाँ जी, मैं
0: जी
1: तुम्हें शेर सुनाऊंगा।
0: जी
1: जो अपने प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि 2 मीटर की दूरी रखनी है,
0: जी जी
1: मैं उत्थे उत्थे गजल लिखी थी।
0: अच्छा क्या बात है। ओदे ते भी
1: मैं
0: लिखते
1: लिखिया,
0: हैं?
1: हाँ जी, इदा ही शायरी होंगी मैम।
0: हाँ जी हाँ जी जी जी
1: मैं लिखिया, मैं अपने अपने सज्जन मतलब मोहरे रख के लिखिया, मैं
0: जी जी
1: 2 मीटर की दूरी
0: जी
1: तेनू कहा सी रखण नू,
0: जी
1: 2 मीटर की दूरी तेनू कहा सी रखण नू, तू दिलां विच दूरी किन्नी पा गया सजना।
0: वाह वाह
1: हाँ जी,
0: क्या बात है जी।
1: ते सैनिटाइजर ने मैं किदा वरत्या वो तुम दस दिंदा।
0: जी
1: चुम चुम के हाथ मेरे तू करदा सी सुचे,
0: हाँ
1: हाथ हंझुआ दे नाल तू तू ला गया सजन।
0: अच्छा वाह वाह बहुत वधिया बनाई वैसे तुसी। जी देख लो है ना मतलब
1: मैं
0: शायर।
1: तेनू तकदा अज दी अज बीच कोरी वांग,
0: अच्छा
1: मैं तेनू तक दी हाँ अज बीच कोरी वांग, तू बदलां दे घोंडे च मुख लगा गया सजना।
0: वाह वाह क्या
1: दो
0: बात
1: मीटर दी दूरी तेनू कहा सी रखण नू, तू दिलां विच दूरी कहीं पा गया सजना।
0: वाह। दौड़ दा तालियां मेरे वालों तुहाडे लिए। ये मैनू लगता किसी
1: मैं
0: सुनाई
1: तुम्हें
0: होएगी
1: दो शेर
0: किते।
1: सुनाना।
0: हाँ जी हाँ जी
1: वो जो पिंड में है ना, किसी नु बाढ़ नहीं सीजन में, जिदा
0: हाँ
1: मैं बाहर
0: हाँ
1: नहीं निकलना,
0: अच्छा
1: बड़े रस्से जे बंदे सी लोगों ने। हाँ जी,
0: जी
1: मैं उत्ते लिखी हूँ गजल।
0: जी
1: साडे पिंड नु राज हो जांदे सारे सुन मसान,
0: अच्छा
1: साडे पिंड नु
0: जी
1: राज हो आंदे सारे सुन मसान,
0: जी
1: दूर ते इक ना नजरी आउंदा किते कोई इंसान।
0: अच्छा
1: मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे
0: जी
1: हुए चर्च भी बंद,
0: जी
1: मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हुए चर्च भी बंद,
0: जी
1: मोड़ मोड़ ते ठेके हुले करदे बजारां, साडे
0: वाह वाह
1: पिंड नु राज आउंदे सारे सुन मसान, दूर तक ना नजरी आउंदा किते कोई इंसान।
0: वाह वाह क्या बात है जी क्या बात है। जोरदार तालियां तुहाडे लई जी। मैं मजाना चाहूंगी।
1: जी, काफी मैंने अवार्ड भी बहुत मिले हैं,
0: हाँ जी हाँ जी
1: मैंने अवार्ड सम्मान भी बहुत ज्यादा मिले मैनू।
0: अच्छा क्या बात है जी। तुहाडा सफर ही बहुत अच्छा है। फिर कि
1: हाँ जी,
0: मुश्किलां
1: हाँ
0: वगैरह भी
1: जी,
0: आईयां होनी है वैसे कि नहीं?
1: अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने तो मैंने साथी भी खड़ा दिता है।
0: अच्छा क्या बात है
1: हाँ
0: जी।
1: जी,
0: ये तो
1: ते मैनू साईं बुल्ले शाह अवार्ड मिले,
0: अच्छा जी
1: शहर लुधियाणवी अवार्ड मिले,
0: वाह वाह क्या बात।
1: शिव कुमार बटालवी साहब अवार्ड मिले, काफी सम्मान मिले मैंने।
0: अच्छा वाह क्या बात है जी। मतलब बहुत वधिया। अच्छा बहुत अच्छे साडे नाल मुसाफिर जुड़ गए जिन्हां दा सफर बहुत वधिया सी।
1: मैनूं बहुत बढ़िया लगा तुहाडे नाल गल करके।
0: जी सानू भी बहुत वधिया लग्गिया जी। इदां साडे नाल कोई जुड़दा अपनी कहानी सुणांदा ना मोटिवेशन मिलदा ना। जिद्दां तुसीं सानू दस्सिया किद्दां तुसीं अग्गे वधे तुसीं अपने शौंक नूं पूरा कीता ते अज भी
1: हाँ
0: तुसीं
1: जी,
0: इस नूं पूरा कर
1: बहुत
0: रहे हो।
1: बहुत धन्यवाद मैम जी, टाइम दिता मैंने थोड़ा। हाँ,
0: जी ते अपना गीत जरूर दस दो मैनूं कहिड़ा सुनना चाहोगे?
1: हंजुआ दे बिच गम नू पाके पीना सिख लिया,
0: वाह वाह क्या
1: जा बेकदरे तेरे बाजू, जा बेकदरे तेरे बाजू जीना सिख लिया, जुआ दे जिच गम नू पाके पीना सिख लिया।
0: क्या बात है जी। तुसी तां मैं क्या 4 चंद तुसी भी लाते साडे प्रोग्राम च फिर तां।
1: हाँ जी, बहुत धन्यवाद जी,
0: बहुत सोहना
1: थैंक
0: गाया
1: यू,
0: तुसी बहुत वधिया गाया बहुत वधिया आवाज है तुहाडी जी।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच साडे नाल गलबात करन लई
1: थैंक
0: जी
1: यू,
0: कॉल करन लई।
1: थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच। लो जी इसी मुसाफिर जिन्होंने अपनी जिंदगी दे असली सफर बारे गल की किस तरीके ना उन्होंने अपनियां कवितावां लिखनी शुरू कीतियां ते किन्नी आसानी कविता बहुत वधिया वधिया लिखियां। देख लो शायर बंदा कितें भी कुछ भी लिख सकता है किसी भी चीज़ से लिख सकता है उन्होंने असली शायर कहते हैं। सो इन्हों की मैं गीती फरमाई जरूर पूरी करांगी जी। उस बार मुड़ के आउंदी हां जी अगले मुसाफिर कोल चलांगी उन्होंने नाल जाणांगे उन्होंने सफर बारे उन्होंने किस्से कहानियां बारे।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान

जी हाँ दोस्तों, स्वागत है जी खास प्रोग्राम जिहदा नाम है लव यू जिंदगी। मैं हाँ थोड़ी दोस्त आरजे सुरभी, पहचान तो तुसी गए होने मैनू चंगी तरीके नाल। लो जी प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है जी। दोस्तों असी सारे इस दुनिया में एक मुसाफर हाँ, कोई मंजिल की भाल में है तो कोई रस्ते की खूबसूरती में गवाचिया होया है। पर असल में जिंदगी किसी स्टेशन पर रुकन का नाम नहीं बल्कि लगातार चलते रहन का नाम है। अज असी गल करांगे साढ़े अंदरले उस सफ़र की जो सानू हर रोज़ एक नवा इंसान बनाउंदा है। सफ़र की गल मैं काफ़ी लंबे समय तो कर रही हाँ, असी दोपहर तो सफ़र की गल कर रहे हैं, तुहाडे भी मैं गल्लां सुनियां, बट फिर भी कितने ना कितने वो सफ़र नहीं सामने आया जो मैं चाहती सी। देखो सफ़र जिंदगी का बहुत सोहना हुंदा है, आपां भी जिंदगी जी रहे हैं, इस टाइम बैठे हाँ, एक सफ़र ते हाँ असी, है ना। इस जिंदगी दे सफ़र विच साडे नाल बहुत कुछ हुंदा है, कुछ अच्छा हुंदा है, कुछ बुरा हुंदा है, कुछ बहुत प्यारा हुंदा है। हर एक चीज़ सानू कुछ ना कुछ जरूर सिखाउंदी है। सो दोस्तों ये सफ़र जिहड़ा साडा चलदा पिया है ये भी जारी रहेगा इस तरीके दे नाल। और प्रोग्राम लव यू जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। ये प्रोग्राम खास पॉजिटिविटी नाल भरिया होया, हर एक दे दिलां तक जुड़िया होया ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਤੋਂ।

वो बहुत खुश होया। पर कुछ देर बाद ना उसनू इकलेपन दा खालीपन महसूस होने लग गया। मतलब चोटी ते तां पहुँच गया, अपनी मंजिल ते भी पहुँच गया, लेकिन राह दे विच जो चीज़ां आईयां उन्हें सारियां मिस कर दियां। उत्थे ना एक बजुर्ग बैठे हुए से, नौजवान ने पूछा कि बाबा जी मैं मंजिल ते तां पहुँच गया पर मैनू वह सुकून नहीं मिलिया जिसकी मैनू उम्मीद से। इस मंजिल तक पहुँच के भी मैं इन्ना खुश क्यों नहीं हाँ जिन्ना मैनू होना चाहिए से। उत्थे बैठे बजुर्ग जिहड़े सी मुस्कुराए तो उन्होंने कहा, पुत्र तू सिर्फ चोटी ते पहुँचन बारे सोचिया पर जे तू इस रस्ते दे सफ़र दा आनंद लिया हुंदा ना तां तेरी खुशी सिर्फ एक चोटी तक सीमित नहीं रहनी सी, तेरी खुशी दुगनी हो जानी सीगी। सो उस दुगनी खुशी नू तू इंजॉय करदा ते तेनू पता चलदा कि सफ़र विच तू की कुछ देखिया। सो दोस्तो, जिंदगी विच ना सिर्फ नतीजियां पिछे ना भजो बल्कि हर रोज़ के सफ़र जीना सीखो। असी अक्सर की करते हैं किसी भी नतीजे तो पहुँचने तक ना असी अपनी जी जान तो लगा देने पर असं ये भूल जाते हैं कि सानू उस सफ़र का आनंद भी मानना चाहिए। हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि असी किसी यात्रा पर जाना, कोई पहाड़ी चढ़नी है या फिर किसी भी जगह जाना है ना, जिदा लोग अजक जाते घूमन फिरन, अगर सोचो कि वह रस्ता सिर्फ सीधा हो, सीधा ही सीधा रस्ता हो, रस्ते विच कुछ भी ना हो, तो तुसी अपनी मंजिल तक पहुँचो कि तुहानू मज़ा आएगा नहीं आएगा। इसी तरीके ना जो असी ट्रेन बस च भी सफ़र करते हैं, सोचो तुसी बस च सफ़र कर रहे हो लेकिन बस च सवारियां नहीं है, कंडक्टर भी नहीं है, आस पास कुछ भी नहीं है, खाली पेड़ पे है, बस सिर्फ एक रस्ता है, तो तुसी अपनी मंजिल ते पहुँच के कि तुहानू रस्ते का मज़ा आया उस सफ़र का नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि तुसी उस सफ़र विच कुछ देखा ही नहीं, तुसी किसी नाल गलबात नहीं की। और आपां रोज़ जो जिंदगी विच चलते हाँ, मैनू लगता कि असी अपने दफ्तर तक भी जो पहुँचना हुंदा या किसी के घर तक ही जाना हुंदा या अपने घर तक ही आना हुंदा, उदों वी असी राह विच बहुत कुछ देखते हैं। कई बार ऐसी कहानियां देखने को मिलती है जिन्हों देख के मोटिवेशन मिलती है, मतलब आपां मोटिवेट हो जाते हैं। लाइक कि मैं भी रस्ते च आ रही सी ते मैं ये देख रही सी कि इन्नी गर्मी दे विच कुछ लोग ऐसे ने जो जमीन तेदे पे ने, उन्हें को छत भी नहीं सी, पैरा दे पौन वाली चप्पल भी नहीं सी, ईवन कि उन्होंने बच्चे भी सके। और मैं उम्मीद है कि वो लोग जिहड़े ने अपनी जिंदगी नू इस तरीके ना गुजार रहे होंगे, शायद उन्हें को चीज़ा नहीं होंगी, पर तुसी सारे ने भी इधर लोग बड़े रस्ते च बहुत बार देखे होंगे। उन्होंने देख के कभी यह एहसास होया कि यार ये किधर ही जिंदगी जींदे, साडी जिंदगी कितनी अच्छी है ते असी कितना वधिया नहीं जिंदगी जी रहे। बस जो मन में ये विचार आया ना मेरे, फिर मैं उदो शुक्र किया रब का कि थैंक गॉड कि रब ने मैनू इन्ना तो दिता है कि मैं काम कर सकती हाँ, कमा सकती हाँ, खा सकती हाँ, पी सकती हाँ, उठ सकती, बैठ सकती हाँ, मैनू कोई तकलीफ नहीं है। और इस करके शिकायत करके भी कोई फायदा नहीं। अगर तुसी भी रब तो बहुत सारी शिकायत रखते हो ना तो शिकायत छड्ड दो, क्योंकि सफ़र ना रब ने तुहानू दे दिता है। इस सफ़र विच किस तरीके नाल तुसी तुरना है, चलना है, फिरना है, किदां इंजॉय करना है, ये तुहाडे हाथ विच है कि सफ़र विच लगे हुए फुल बूटे तुसी देखने है कि नहीं देखने, कि सफ़र नू सिर्फ और सिर्फ एक सफ़र वांग समझ के या मंजिल समझ के इंजॉय करना है। लाइक एग्जाम दे विच भी असी कोई पेपर कर रहे हैं, कोई एग्जाम है, उस पेपर की तैयारी दे विच जे कोई मज़ा ना होवे, हुण तुसी सोचोगे कि तैयारी विच की मज़ा, नहीं, तैयारी विच बहुत कुछ हुंदा है। जो आपां किसी चीज़ की तैयारी करते हैं ना उहदे विच भी बड़ियां सारियां चीज़ां इनकलूड हुंदी है, आपां किद्दां करनी किद्दां नहीं करनी। हुण किसी को कोई ऑर्डर ही आ गया, चलो समझो किसी को कोई ऑर्डर है, कपड़े का ऑर्डर आ गया डिजाइनर कोल, हुण उस डिजाइनर दे कोल किसी टेलर दे कोल एक अलग डिजाइन का ऑर्डर है कि जी मैनू यह डिजाइन के कपड़े चाहिए है। अगर टेलर उत्थे मना करदे नहीं जी नहीं मैं तो भी इदा के कपड़े सींदा, मैं इदा के नहीं सी सकदा, तो वो फिर टेलर अपने सफ़र नू इंजॉय नहीं कर रहा, उन्हों एक जगह बना ली कि हाँ बस मैं इतों तक ही हाँ, अगे नहीं जा सकता। अगर वो एक्सैप्ट करे कि हाँ मैं बना लूँगा, मैं कोशिश जरूर करूँगा, उदो जो कोशिश करेगा ना उस सफ़र तो बहुत सोहना हो जाएगा, उस सफ़र में बड़िया सारी चीज़ा होनगियाँ, उन्हें पता लगेगा यार इदा भी होंगे, इदा भी होंगे, उन्हें मज़ा भी आएगा, कितने कितने उन्हें मुश्किल भी होनगियाँ, लेकिन वह सीखेगा। पर एक दिन वो एक होर वधिया डिजाइनर बन जाएगा तो इस तरीके अपने काम को होर वधाएगा। सो लाइफ भी इसी तरीके की, इंजॉय करते रहो जी, हमेशा खुश रहो, अपने सफ़र नू इंजॉय करो और जो मिलिया ना उहदे विच तसली रखो, शांति रखो, ते ये जिहड़ा सफ़र साडा चलदा ये भी इसी तरीके नाल चलदा रहेगा। तुसी बस जुड़े रहना मेरे नाल ते इंजॉय करते रहना जी,
ਸਾਡੇ

बिल्कुल जी, चुरा लिया है तुमने, क्योंकि आज सवेरे मौसम जिस तरीके का से ना उन्हें तो सवेरे उठते ही मेरा चैन और सुकून, मेरी खुशियां सब कुछ चुरा लिया सी। जिदा मैं पहले भी दसा कि भाई संडे जरा हों क्रिकेट लवर्स का डे हों, मॉर्निंग हो गया असं क्रिकेट खेडन जाना हों, लेकिन इंद्रदेव न पता नहीं अज की सूझी, कल तक एड्डी गर्मी तो सवेरे उठते ही जो हनेरी जो मीह, सारा का सारा मौसम जोड़ा है पांच घंटे लिए पूरे तो पूरा बदल गया। लेकिन कितना कितने कहें ना कि हर दुख के पिछे छोटी जी खुशी भी होंगी है। ठीक है, सवेरे क्रिकेट मिस होने का दुख जरूर है, लेकिन उसके पिछे सारा दिन ठंडा ठंडा निकल गया इसकी खुशी भी हैगी है। सवेरे एक खूबसूरत मौसम जोड़ा है वो इंजॉय करने मिल गया इसते भी खुशी है। सो लाइफ के औखा तो सौखा दोनों टाइम आता है, तुम्हें लभना है कि औखे विचों सौखा की लाभ कर सकते हो। सो अगले चार घंटे थोड़े इस औखी जिंदगी विचों सौखापन लैके मैं थोड़े नाल जुड़ गया जी, बहुत सारी गल्लां बहुत सारे गीत ते बहुत सारा प्यार लैके दस दे अगले चार घंटे की महफिल विच की चलना है। सत और चलेगी जी फिल्मी दुनिया की गॉसिप, दसांगा कि फिल्मां पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई हैं, की उन्होंने बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट रही हैगी है, तो की जी गपशप हैगी है बॉलीवुड के चल रही है। फिर 8 बजे आ जाएंगे जी असी, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ 8:30 ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਸਪੋਰਟੀ ਸੰਡੇ, ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਊਂਗਾ। 9 ਵਜੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਖਬਰ ਕਿਆ ਸ਼ਾਮੇ ਗਜ਼ਲ, ਅਤੇ 10:30 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਸੌਂਗਸ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਾ ਨਗਮਾ ਹੈ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत ते मुताबिक बुलाया जावेगा।

अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंगे हैं।

0: रहा यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: विच कयामत मूवी द ऐप ट्रैक एंजॉय करो।
1: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
2: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ
1: ये कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
2: तो भुगतो।

शाम गजल के इस महफिल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगला आधा घंटा कुछ प्यारी गजलें और कुछ प्यारी कहानियां लेके मैं चलूंगा। ये कहानी है एक अधूरेपन की, एक अधूरी चिट्ठी की। रात का सन्नाटा था और मेज पर रखी एक पुरानी चिट्ठी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आरव ने धीरे से उसे खोला। वो चिट्ठी नंदनी की थी जो बिना बताए उसकी जिंदगी से चली गई थी। चिट्ठी में लिखा था, कभी कभी दूर जाना जरूरी होता है ताकि प्यार की गहराई समझ में आए, जो पास रह कर ना समझ सके वो दूरी से ही शायद समझ पाए। आरव की आंखें भर आई, उसे याद आया वो आखिरी दिन जब छोटी सी बात पर

दोनों चुप हो गए थे। वो सोचने लगा, बात छोटी थी पर अहंकार वो बड़ा हो गया। दो दिल तो थे पास पर फासला खड़ा हो गया। उसने चिट्ठी के आखिरी हिस्से को पढ़ा, अगर कभी याद आऊं तो मुझे ढूंढ लेना, मैं वहीं मिलूंगी जहां हमने पहली बार हंसा था। अगले ही दिन आरव उसी पुरानी कैफे पहुंचा जहां उसकी पहली मुलाकात हुई थी, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला नंदिनी सामने बैठी थी, वही मुस्कान लिए। दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर नंदिनी बोली, शायद किस्मत को भी ये रिश्ता मंजूर था, तभी तो हमें फिर से मिलाया। आरव मुस्कुराया और धीरे से कहा, जो अधूरी थी चिट्ठी वो कहानी बन गई, तेरे मेरे प्यार की नई निशानी बन गई, और इस बार दोनों ने तय किया, खामोशी नहीं हर बात कहेंगे। शामे गजल की महफिल मेरे साथ यानी आपके दोस्त सचिन के साथ रात 10:30 बजे तक।

बारिश हो रही थी और सड़क किनारे खड़ी मीरा छतरी भूल गई थी। तभी एक अनजान लड़का आया और अपनी छतरी उसके साथ साझी कर ली। दोनों चुप थे, पर बारिश वो तो बहुत कुछ कह रही थी। मीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा, कुछ लोग यूं ही मिल जाते हैं राहों में, जैसे बारिश मिलती है सूखी हवाओं में। थोड़ी दूर चलने के बाद लड़का बोला, आप यहीं रहती हैं? मीरा ने बस सिर हिला दिया और फिर वो चला गया, बिना नाम बताए, बिना कुछ कहे। उस दिन के बाद मीरा रोज उसी रास्ते पर आती, शायद फिर वही बारिश, वही छतरी कभी मिल जाए। कुछ मुलाकातें अधूरी रह जाती हैं, पर दिल में हमेशा पूरी होती हैं। शामी गजल की ये महफिल मेरे साथ यानी आपके दोस्त आरजे सचिन के साथ चल रही है रात 10:30 बजे तक।

पुराना रेडियो जो हर शाम खुद ही चालू हो जाता था। दादी कहा करती थी, इसमें तुम्हारे दादा की यादें बसती हैं। आर्यन ने एक दिन उसे ठीक करने की कोशिश की और अचानक एक पुराना गाना बज उठा और उसके साथ एक कागज भी गिरा जिसमें लिखा था, आवाज में छुपा है मेरा यार, जब भी सुनो समझ लेना मैं पास हूं यार। आर्यन मुस्कुराया, उसे एहसास हुआ कि कुछ चीजें कभी पुरानी नहीं होती। वक्त बदलता है पर यादें नहीं, दिल में जो बस जाए वो पाते नहीं। शाम गजल की इस महफिल की अगली गजल अपने दोस्त आरजे सचिन के साथ एंजॉय कीजिए।

रिया और कबीर एक ही क्लास में थे पर कभी बात नहीं करते थे। फिर भी हर दिन एक दूसरे को देखते और मुस्कुरा देते। एक दिन कबीर स्कूल नहीं आया। रिया को अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। जो बातों में नहीं थी वो एहसास बन गया। एक खामोश रिश्ता भी खास बन गया। कुछ दिनों बाद कबीर लौटा। रिया ने पहली बार उसे कहा, तुम नहीं थे तो अच्छा नहीं लगा। कबीर मुस्कुराया और बोला, अब कभी बिना बताए नहीं जाऊंगा। कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, बस एक एहसास से ही सब जुड़ जाते हैं। शाम गजल के इस महफिल को अब मुझे समेटने की इजाजत दीजिए। मिलते हैं एक प्यार का नगमा है में। सुनते रहिए अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन 102.7 FM रेनबो, अपने फेवरेट रेडियो आरजे सचिन के साथ।

आप सुन रहे थे एक प्यार का नगमा है। अब इजाजत दीजिए एक प्यार का नगमा है को समेटने की, और इसी के साथ मैं इजाजत लेना चाहूंगा आज के इस महफिल को भी समेटने की। लेकिन जाते जाते, जैसे कि मैं हमेशा सबके लिए कहता हूँ, जिंदगी बहुत हसीन है दोस्तों, जीने का अंदाज ही इसे खूबसूरत बनाता है। अक्सर हम शिकवा शिकायतें, बहुत सारी परेशानियां लेकर खुद को बहुत सारे प्रेशर में दबा देते हैं। हम अक्सर दूसरों को देखकर जीने लगते हैं, जिसमें कई बार खुद के लिए सवाल खड़े हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, वक्त जो है वो आज का है, कल जो गुजर गया वो आप बदल नहीं सकते, आने वाले कल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अगर कभी किसी के लिए कुछ अच्छा करने का मौका मिले तो 4 कदम आगे बढ़ के कीजिए, और कभी किसी के लिए कुछ बदला लेने का या कुछ बुरा करने का मौका मिले तो 8 कदम पीछे हट जाइए। आपका किया हुआ काम ही आपको इंसान बना दिए। आज के इस महफिल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए और अपना प्यारा रेडियो स्टेशन 102.7 एफएम रेनबो सुनते रहिए। आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आकाशवाणी के नाम से सर्च करके फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दोस्त आरजे सचिन को भी इंस्टाग्राम पे RJ_SSACHIN करके फॉलो कर सकते हैं। तो जब यहाँ नहीं मुलाकात होगी तो सोशल मीडिया पर मुलाकात होगी। तब तक ख्याल रखिए, अलविदा, ध्यान रखिए।